ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 55 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। आज के चिंतन का विषय है श्रद्धा और विश्वास।

कभी किसी पत्रिका में उड़िया की एक कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। गांव में अकेली रह रही वृद्धा माँ को बेटा शहर ले आता है। वृद्धा माँ नेम टेम वाली, नियमित भजन कीर्तन करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, नियमित मंदिर जाने वाली। बेटा शाम को शहर पहुंचा है माँ के साथ। परेशान है, किसे अपना दुख कहे। जिस मोहल्ले में उसने किराए का घर ले रखा है उसमें करीब ठीक ही कहीं मस्जिद है। भोरे उसमें तार सप्तक में अजान दी जाती है, आवाज यहां तक आती है। माँ जब सुनेगी तो कैसी चिढ़ जाएगी, कहां ले आया मुझे उठाकर। पति पत्नी चिंतित हैं, देर तक अपना दुख बतियाते हैं, चिंता में डूबे डूबे ही सोते हैं। भोर में किवाड़ पर दस्तक, माँ है, अजान दी जा रही है, अब क्या होगा। पर दरवाजा खोलना ही है। डरते सहमते बेटा किवाड़ खोलता है। माँ हर्षित है, आह्लादित है। अरे बेटा, कहीं पास ही मंदिर है क्या। कितने अच्छे मोहल्ले में तूने घर ले रखा है। कितना मधुर और सदा स्वर है गायक का, कितनी मीठी आवाज में भजन गा रहा है। जी जुड़ा गया, तन्मयता और श्रद्धा ऐसी कि औरों की दृष्टि में जो मस्जिद की अजान है, निश्चल मन में वह भजन है, अंतर तक भिगो देने वाला भजन है। क्या यही मधुमति भूमिका नहीं है। मेरे अग्रज एक भजन गाते थे, सिर धर मटुकिया डोले रे, ब्रज की ग्वालने दही बेचने अन्य गांव गई हैं, सिर पर दही की मटकी है, मन में हर घड़ी छाए रहने वाले श्याम। नतीजा, दधि का नाम भूल गई ग्वालिन, हरी ले बोले रे, लो सिर पर है दही और मन में है हरी, कहां दही याद रहा, हरी को बेचे जा रही है। यह नहीं कहती दही लो रे, कह रही है हरी लो रे, हरी लो रे। मुग्धावस्था का चरम, छाप तिलक धर दीनी, या ऊधो मन तो एकै माही, सो तो ले घनश्याम सिधारे। जोग सिखावन का ही कि आत्मा अवस्था कहने का अब होश कहां रह गया है। कहां सुधी है अजान में और हरि भजन में भेद करने का। मीरा के विषपान में लोग ईश्वर कृपा चमत्कार पाते हैं। जो राणा ने भेजा था वह तो मीरा के लिए एक पेय पदार्थ था। विष कहां था कि प्राण लिया। हृदय राम जो हुई तो भेद करने पर रखने की दृष्टि कहां रह जाती है। स्वर्गीय भोलानाथ पिंब की एक कविता है, श्रद्धा जब दिया जलाती है, प्रतिमा की पूजा भी ले जाती है, मंदिर भी उजियारा हो जाता है। नहीं बंधु, श्रद्धा जब श्रद्धा से दिया जलाती है तो कहां प्रतिमा कहां मंदिर, बाहर भीतर चारों ओर उजियारा ही उजियारा। सिर पर दही, मुंह में हरी ले, हवा में अजान के स्वर, कानों में भजन के मीठे बोल।

आज का चिंतन हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:10 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोकरंग। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार के अंतर्गत ये भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और जांच। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद होंगी डॉक्टर संगीता रानी, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी ओर से ममता कुमारी प्रसाद।
1: आज हम अपने कार्यक्रम में बात करते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता रानी से, जो हमें बताएंगे कि गर्भ के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए। तो डॉक्टर संगीता, सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार है।
2: नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर संगीता, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उन्हें किस चीज की सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या जांच करानी चाहिए, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भ के दौरान होने वाली कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए।
2: सबसे पहले किसी भी गर्भवती महिला को बॉयल वाटर पीना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। उबाल कर मतलब बिल्कुल 10 मिनट तक खौला कर ठंडा करके या तो घड़े में रख लें या फ्रिज में रख लें, और पानी इतना पिए कि पेशाब का रंग पीला नहीं हो। अगर सादा पानी नहीं पी पाती हैं तो नींबू पानी, दाल का पानी, सत्तू, हॉर्लिक्स, इलेक्ट्रोल पाउडर कुछ भी पी सकती हैं, लेकिन पानी इतना पिए कि पेशाब का रंग पीला ना हो और उबला पानी होना चाहिए। दूसरी बात कि नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए और साफ होने चाहिए
1: जी।
2: और
1: हमारे गांव में एक भ्रांतियाँ होती हैं, कहते हैं महिलाएं जब उनका गर्भ जो है 8 महीने का होता है उसके बाद कुछ काटना मना होता
2: नहीं,
1: है
2: ऐसा कोई बात नहीं है। वो नाखून बड़ा रहने से पेट में कीड़ा होने का डर रहता है, उसकी गंदगी से कीड़ा होने का डर रहता है, इसलिए नाखून हमेशा काट के रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कोई भी चीज़ बिना धोए नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हाथ बढ़िया से धोना चाहिए। पानी भरपूर पीना चाहिए। इस समय गैस का शिकायत बहुत रहता है, खाना नहीं पच रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो खाना के आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए या खाना के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। खाना के बीच में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना हर 3 घंटे के अंतराल पर थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। एक बार में ज़्यादा खाना खाने की बजाय हर 3 घंटे में थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, और खाने के बीच में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए।
1: डॉक्टर संगीता, यहाँ हम एक बात पूछना चाहेंगे कि खाना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन गांव में अक्सर क्या होता है कि महिलाएं जो है अपने घर के कामों की वजह से बहुत देर तक भूखी रहती हैं, और गर्भ में भूखे रहने से क्या नुकसान हो सकता है?
2: बहुत तरह का नुकसान हो सकता है। बच्चा तो सुस्त हो जाएगा, और बच्चे के कमजोर होने का भी डर रहता है। महिला को भी एनेमिक हो सकती हैं, वीकनेस हो सकता है इसलिए, और एक बार में ज़्यादा खाना खाने से फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हर 3 घंटा में थोड़ा सा कुछ भी खाइए। फल, साग, सब्जी सब भरपूर खाना चाहिए। अंकुरित अनाज जैसे चना, हरा मूंग फुला के अंकुर बना के ये जरूर यूज करना चाहिए। तेल, मसाला ये सब कम से कम खाना चाहिए, ना खाएं तो सबसे अच्छा। अंडा, मीट, मछली सब खा सकती हैं, लेकिन तेल मसाला कम होना चाहिए।
1: और एक बात यहाँ आती है कि गर्भ के दौरान सबसे परेशानी जो आती है वो है उनके पेशाब की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार पेशाब लगता है, कभी होता है कि बहुत कम पेशाब होता है, ये क्यों होता है?
2: महिलाएं पानी पूरा नहीं पीती हैं, इसीलिए खौला हुआ पानी ठंडा करके पीना चाहिए, खाना के आधा घंटा पहले या खाना के 1 घंटा बाद। और पानी इतना पीना चाहिए कि पेशाब का रंग पीला नहीं हो, हल्का पीला हो सकता है, गाढ़ा पीला नहीं होना चाहिए। और अगर उसके बावजूद दिक्कत हो रही है तो जरूर महिला रोग विशेषज्ञ से मिलकर जांच करा लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर संगीता, एक आम समस्या जो आती है महिलाओं के सामने शुरुआत में, तो वो होती है कब्ज की समस्या। उन्हें बहुत ही कब्जियत महसूस होता है,
2: हाँ।
1: तो इसमें क्या करना
2: है? प्रेगनेंसी में कब्ज बहुत कॉमन चीज है, तो इसके लिए सावधानी बहुत थोड़ी सी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। पानी, उबाला हुआ पानी पिएंगी, पानी इतना पिएंगी कि पेशाब का रंग पीला नहीं हो। रात में सोते समय गर्म दूध पिएंगी, मलाई हटाकर गर्म दूध पीना है। सुबह खुलासा पकाना होगा, सुबह में बासी मूंग 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी जितना वो पी सकती हैं, बिल्कुल गर्म गर्म चाय की तरह पीना है। अगर बर्दाश्त होता है तो थोड़ा सा नींबू नमक डाल के पीना है, घूम टहल लेना है, तब पखाना जाना है, एकदम खुलासा पखाना होगा। और चना और हरा मूंग फुला के डेली एक मुट्ठा खाएंगी, साग सब्जी भरपूर खाएंगी, तेल मसाला कम से कम खाएंगी। प्रेगनेंसी के समय में कब्ज होने से बवासीर होने का डर रहता है, अगर परहेज के बाद भी डेली खुलासा पखाना नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे।
1: जी डॉक्टर संगीता, आप बता रही हैं कि रात में जैसे गर्म दूध लेने की बात कर रही हैं, गर्म पानी

0: की बात कर रही हैं, लेकिन ये कहा जाता है कहीं कहीं पर महिलाओं को कि ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, इससे बच्चे को नुकसान होगा।
1: नहीं, उतना गर्म नहीं। गर्म का मतलब कि जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, ल्यूक वार्म से थोड़ा ज्यादा गर्म, ऐसा नहीं कि जीभ जल जाए, और उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को।
0: तो डॉक्टर संगीता, अब हम बात करते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला किसी डॉक्टर के पास जाती है, तो सर्वप्रथम जो है बहुत सारे जांच उसको बताए जाते हैं कराने के लिए, तो इस दौरान कौन कौन से जांच कब कब करानी चाहिए?
1: सर्वप्रथम तो जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, उनको 5 बार तो जांच कराना जरूरी है। 5 बार कम से कम मिनिमम डॉक्टर के पास उन्हें जाना चाहिए, या तो वो PHC जाएं या किसी लेडी डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले तो जैसे उनका मासिक चढ़ा कंफर्म करना होता है, उसके बाद वो किसी भी डॉक्टर से मिल सकती हैं। उसके बाद 3 महीने में, 4.5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में और 9 महीने में, इतना तो 9 महीने में इतना बार जाना जरूरी है। अगर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ज़्यादा बार जाना चाहिए। पहली बार जब कोई भी महिला जांच के लिए जाती हैं, उस समय उनके देह में कितना खून है, उसके लिए हीमोग्लोबिन जांच होता है, किस ग्रुप का खून है, ABO ग्रुपिंग उसको बोलते हैं, RH टाइपिंग बोलते हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ABO ग्रुपिंग, RH टाइपिंग, HIV, हिपेटाइटिस और रूटीन यूरिन, इतना तो कराना ही होता है। हीमोग्लोबिन, ABO ग्रुपिंग, RH टाइपिंग, HIV, हिपेटाइटिस एंड रूटीन यूरिन। 5 महीने में एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, और 7 महीने में एक हीमोग्लोबिन, रूटीन यूरिन और ब्लड शुगर, और 8 महीने में अगर करा सकते हैं तो एक अल्ट्रासाउंड।
0: तो डॉक्टर संगीता, ये तो हुई जब कोई महिला नॉर्मल है और नॉर्मल रूप में ये सारी जांचें उन्हें करानी चाहिए। मान लीजिए किसी किसी केस में क्या होता है कि उन्हें बार बार गर्भपात होता है, तो उस केस
1: जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात होता है, उनको इन जांचों के अलावा जब पहली बार वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उस समय रूटीन जांच के अलावा एक ब्लड शुगर और थायराइड जांच भी करा लेना चाहिए, और फिर 7 महीने में फिर एक ब्लड शुगर रिपीट करा लेना चाहिए। इसके अलावा अपने लेडी डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए।
0: उनका जो इंजेक्शन लगता है वो किस महीने में लगाना चाहिए और कितना?
1: वो 2 इंजेक्शन सफिशियंट है। पहला इंजेक्शन 4.5 महीने में, दूसरा इंजेक्शन 1 महीने के बाद। अगर 1 महीने के बाद नहीं लगा पाए तो पहले इंजेक्शन के 1 महीने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं उस समय लगा लें।
0: डॉक्टर संगीता, किसी औरत के लिए उसका गर्भ का ठहरना एक सपने का साकार होने के जैसा है, लेकिन हमारे गांव में महिलाएं इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेती हैं।
2: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान सावधानियां और जांच से संबंधित भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर संगीता रानी, और इनसे बातचीत करी थी हमारी ओर से ममता कुमारी प्रसाद। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। संकलन एवं वाचन है अनामिका और नमता परवीन का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
2: मैं हूं अनामिका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों हमारे अपने प्यारे कार्यक्रम फुलवारी में।
0: और मैं हूं नहमता। फुलवारी यानी फूलों से सजा एक ऐसा सुंदर बागीचा जहां हर फूल अपनी अलग खुशबू और खूबसूरती लेकर आता है।
2: हाँ, और हमारे लिए इस फुलवारी के सबसे प्यारे फूल नहमता, ये जो बच्चे दिख रहे हैं यही है ना? तो आप सभी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त आज की हमारी फुलवारी के
0: मेहमान है। तो आप सब फुलवारी में खूब मस्ती करने के लिए तैयार है ना?
1: जी।
2: अरे वाह, इतनी सारी आवाजें, लगता है आज की फुलवारी में फूल ही फूल खिले हैं।
0: बिल्कुल, तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी मुलाकात। यहाँ होगी बच्चों की बातें और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम।
2: और हाँ बच्चों, आज आप ही फुलवारी के असली सितारे हैं, इसलिए खुलकर बोलिए, हंसिए और अपने मन की बात हमारे साथ साझा कीजिए। तो नहमता, पहले शुरू करते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, देखते हैं वो क्या सुना रही हैं। आप आगे आइए। आप अपना नाम बताइए।
3: आइले जही।
2: और क्या सुना रही है?
3: हाथी राजा कहाँ चले, छूट ला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुलची पर, कुलची बोली चटर पटल ले चटर पटल। मोटू जी की तोन बली चीटी, उस पर एक चिड़ी, छोर मचाते डब्बू लाम, चीटी नीचे गिरी डरा।
0: हाँ तो दोस्तों, चीटी गिरी धड़ाम, भाई चीटी तो नीचे गिर गई, अब आगे क्या है? आप अपना नाम बताइए।
3: आइजल जहीन।
0: और क्या सुना रही है?
3: चिड़िया बोली कुट कुट कुट, मुझको दे।

0: कैसे खाऊं, क्या मैं भूखी ही सो जाऊं।
1: क्या बात है।
2: अरे वाह भाई, भूखे तो नहीं सोना है ना? भूखे सोना है?
3: बिल्कुल नहीं, भूखे कभी नहीं सोना है। और अब आप आगे आइए, आगे आइए।
1: आप अपना नाम बताइए।
0: आयरा फातिमा।
1: और क्या सुना रही है?
0: सॉन्ग।
1: चलिए सुनाइए।

0: ते उठता है सर अपना जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना सपने सच करने की बारी ओ तू सारे जहां से प्यारी मेरी भारत की बेटी।
1: और अब नहमता ये भारत की बेटी गीत के बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही हैं।
2: मेरा नाम हनीफा सादिया है और मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ।
1: सुनाइए।
2: माना के

0: और इस खूबसूरत से नात के बाद अब देशभक्ति गाना आप लोग सुनाएंगे ना?
1: जी हाँ।
0: अपना अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम सालिहा जन्नत है।
3: मेरा नाम हनीफा सादिया है।
0: चलिए स्टार्ट कीजिए।

0: वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
1: और अब इस देशभक्ति गीत के बाद कहानी सुनते हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या कहानी सुना रही है बताइए।
2: मेरा नाम महरीन है और मैं सुनाने जा रही हूँ एक कदम और।
1: सुनाइए।
2: एक छोटे से शहर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे एक बात का डर हमेशा सताता था, असफल होने का डर। स्कूल में एक दिन विज्ञान की प्रदर्शनी होने वाली थी। अनाया ने कई दिनों तक मेहनत करके एक मॉडल तैयार किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका मॉडल सबसे अच्छा होगा, लेकिन प्रदर्शनी के दिन उसके मॉडल में अचानक कुछ खराबी आ गई। मॉडल काम नहीं कर रहा था। अनाया बहुत निराश हुई। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाई, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। तभी उसकी शिक्षिका उसके पास आई और बोली, अनाया क्या तुमने कभी पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी को देखा है? अनाया ने कहा, हाँ मैम। शिक्षिका ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या वह व्यक्ति एक ही कदम में पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है? अनाया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शिक्षिका बोली, वह बस एक कदम और बढ़ाता है, फिर एक कदम और। रास्ते में थकता भी है, कभी फिसलता भी है, लेकिन रुकता नहीं। सफलता भी ऐसी ही होती है। अनाया ने अपनी शिक्षिका की बात ध्यान से सुनी। उसने फिर से अपने मॉडल को ठीक करने की कोशिश शुरू की। पहली कोशिश असफल हुई, दूसरी कोशिश भी असफल हुई, लेकिन तीसरी कोशिश में मॉडल चल पड़ा। शाम को जब परिणाम घोषित हुआ तो अनाया को पहला पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार लेते समय उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उस दिन अनाया समझ गई कि जीत हमेशा पहला स्थान पाने का नाम नहीं है। असली जीत तो होती है जब हम हार मानने के बजाय खुद से कहते हैं, एक कदम और। सीख: जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम कोशिश करना नहीं छोड़ते तो सफलता हमसे ज्यादा दूर नहीं रहती। इसलिए जब भी लगे कि अब नहीं हो सकता, खुद से कहिए, बस एक कदम और। धन्यवाद।
1: तो बहुत अच्छी सीख वाली कहानी सबने सुनी। सीख तो सीखा, क्या सीखा?
3: कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और कभी भी मेहनत छोड़ना नहीं चाहिए
1: और प्रयास करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रयास करना, छोड़ना नहीं है।
4: और इस कहानी में सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि मोटिवेशन देने के लिए कोई और हो या ना हो, खुद के लिए खुद मोटिवेट करना चाहिए खुद को, कि जब भी लगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलना है खुद से, बस एक कदम और, है ना?
1: और तो अब एक कदम आगे और बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम में। और आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही हैं।
5: मेरा नाम उज्मा हाशमी है और मैं दोस्ती पर कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्ती कभी स्पेशल लोगों से नहीं होती, जिनसे भी दोस्ती हो जाती है वो लोग ही स्पेशल हो जाते हैं। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। मैंने जिंदगी में दोस्त नहीं ढूंढे, मैंने एक दोस्त में जिंदगी ढूंढी है। मुसीबत में प्यार नहीं जनाब, यार सबसे पहले आते हैं। कभी झगड़ा कभी मस्ती, कभी आंसू कभी हंसी, छोटा सा पल छोटी छोटी खुशी, प्यार की कश्ती और ढेर सारी मस्ती, बस इसे ही कहते हैं दोस्ती।
1: बहुत बढ़िया। तो सबके जीवन में एक दोस्त तो होना चाहिए, है ना?
6: जी दीदी।
7: और जोर से आवाज निकलना चाहिए भाई, दोस्त। अरे वाह, आइजल का आवाज तो कितना तेज निकला बाबा। दोस्त चाहिए ना, चाहिए, अभी बोले, बोली बोली बोली जी। तो सभी को अपनी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त जरूर चाहिए होता है। आप लोगों का क्या है, देशभक्ति गाना है ना, तो अपना नाम बताइए।
8: मेरा नाम सालेहा जन्नत है।
9: मेरा नाम अफीफा फातिमा है।
7: और चलिए सुनाइए, कौन सा गाना सुना रही है?

0: एक और गाना सुनाना चाहती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: शहर का वस्त था मासूम, कलियां गुनगुनाती थी, कलियां गुनगुनाती थी, हवाए खैर मकदम के तराने मुस्कुराती थी, तराने मुस्कुराती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न देखा बे के मेंबर से, न देखा बे के मेंबर से, कितने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से, कि अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह वे भी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। शुक्रिया।
1: आप अपना नाम बताइए।
2: अलीजा साकिब।
1: और चलिए क्या सुना रही है वो सुनाइए।
2: आठ टमाटर बड़े बड़े रहा, वो आठ टमाटर बड़े बड़े, एक दिन इसके चूहा ने खाया मोटू को मार बा, आठ टमाटर बड़े बड़े रहा, वो आठ टमाटर बड़े बड़े, एक दिन इसके चीची ने खाया मोटू को भी मार बा।
1: और अब आप अपना नाम बताइए।
3: शगुफ्ता सना।
1: और क्या सुना रही हैं आज प्रोग्राम में।
3: मैं कुछ शायरी सुनाना चाहती हूँ।
1: सुनाइए।
3: इल्म की राह में जो कदम बढ़ाते हैं, इल्म की राह में जो कदम बढ़ाते हैं, वही अपने ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। मेहनत को अपना साथी बना लो ए दोस्तों, सितारे भी एक दिन तुम्हारे नाम हो जाते हैं। किताबों में छुपे हैं कामयाबी के राज, किताबों में छुपे हैं कामयाबी के राज, मेहनत से सजाओ अपने कल का अंदाज। आज का पसीना जो खुशी से देगा कल, इल्म से रोशन होगा तुम्हारा हर पल। मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, रास्ता लंबा हो तो रुक जाना नहीं। तालीम है वो दौलत जो कोई छीन ना सके, मेहनत करने वालों को कोई हरा ना सके। शुक्रिया।
1: चलो आप क्या सुना रहे हैं।
0: मैं हिमालय पर एक कविता सुना रही हूँ।
1: और अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम नेदा हाशमी है।
1: चलिए सुनाइए।
0: खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पद पर सब कठिनाई तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। धन्यवाद।
1: और अब इस कविता के बाद आगे बढ़ते हैं नहमता, कहानी सुनते हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: जी, मेरा नाम रुमाना परवीन है।
1: और क्या कहानी आप सुना रही हैं।
4: मेरा कहानी का नाम है सच्चा हीरा। सूर्यास्त होने को था, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की चार स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आई, अपने अपने घड़ी में पानी भर कर वे इधर उधर की बातें करने लगी। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, वह लाखों में एक है, उसका कांड बहुत सुरीला है, लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूँ मेरा बेटा तो हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया, वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है, वह तो आज के युग का भीम है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप कैसे रहती, वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता था, उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बात सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही, उसका भी एक बेटा था पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, ना तो वह अच्छा गायक है और ना ही भीम सा बलवान। जब वे अपने अपने घड़ी सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी एक मधुर गीत सुनाई दिया। वह सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है, तुमने सुना उसका कण कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा उधरी से आता दिखाई दिया, उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। थोड़ी देर ही में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा, वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियाँ अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर ही से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गई। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है।
5: बच्चों यहाँ पे इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
6: सच्चा हीरा वो है जो अपने माँ बाप की ये खिदमत करता है, और वो नहीं जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा गाता है।
5: बिल्कुल, बुद्धिमान है और बहुत टैलेंटेड है, तो उसके बाद भी अगर वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, खिदमत कर रहा है, तो वो सच्चा हीरा है। लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी अगर वो माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, तो फिर उसका टैलेंट किसी काम का नहीं है। क्यों?
1: आप कहानी सुना रही हैं?
7: जी।
1: और ये कहानी क्या है?
7: एक आखिरी अलविदा।
1: एक आखिरी अलविदा। आप अपना नाम बताइए।
7: फरहनाज। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसी चीजें छोड़ने पर मजबूर कर देती है जिन्हें हम दिल से कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, और शायद वही छोड़ना हमें आगे बढ़ाना सिखा देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी आरूही। वो वाराणसी की उन तंग गलियों में पली बड़ी थी जहाँ हर मोड़ पर उसकी कोई ना कोई याद बसी हुई थी। उसका एक छोटा सा घर था। घर के पास एक पुराना सा नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक बेंच जहां वो अक्सर शाम को बैठ जाती थी। शाम होते ही कभी कभी वह नदी के किनारे भी चली जाती थी। पानी पर पड़ती रोशनियां, दूर जाती हुई नाव, हवा में घुली हुई शहर की पुरानी सी खुशबू और आसपास की वह चहल पहल, ये सब उसके लिए इतना जाना पहचाना था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा। वाराणसी आरूही के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वही उसने पहली बार स्कूल जाना सीखा था, वही गलियां उसकी बचपन की शरारतों की गवाह थी, वही छोटी सी दुकान जहां से वह बारिश के दिन कुछ ना कुछ लेने जरूर जाती थी, वही लोग, वही रास्ते, वही शामें, सब कुछ उसका अपना था। लेकिन फिर एक दिन आरूही का एडमिशन एक दूसरे शहर के कॉलेज में हो गया। वह उसका सपना था, एक बहुत अच्छा कॉलेज, एक नया मौका, एक नई शुरुआत। सब खुश थे, बस आरूही नहीं। वह जानती थी कि उसे जाना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए। लेकिन जाने का फैसला कर लेना और चले जाने में दोनों में बहुत फर्क होता है। जाने से एक दिन पहले आरूही अपने घर में ऐसे घूम रही थी जैसे पहली बार सब कुछ देख रही हो। उसने अपने कमरे की दीवार को देखा जहाँ अब भी बचपन के कुछ पुराने स्टिकर्स लगे हुए थे। फिर वह बाहर निकली, वही गलियां, वही आवाजें, वही रास्ते, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, बस आरूही की जिंदगी बदल रही थी। शाम को वो एक बार फिर नदी के किनारे जाकर बैठ गई। वह कुछ देर तक बस पानी को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या मैं वापस आऊंगी, और जब आऊंगी क्या सब कुछ ऐसा ही होगा। शायद उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि वह आगे तो बढ़ जाएगी लेकिन पीछे कुछ छूट जाएगा। थोड़ी देर उसके पापा उसके पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर आरूही ने धीरे से पूछा, पापा अगर मैं चली गई तो यह सब पीछे रह जाएगा ना? पापा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जगह पीछे रह सकती है आरूही, पर यादें नहीं। आरूही चुप रही। पापा ने फिर कहा, हर चीज को साथ लेकर नहीं चला जा सकता, कुछ चीजों को वहीं छोड़ना पड़ता है जहां वह सबसे ज्यादा अपनी होती है। आरूही ने एक बार फिर आसपास देखा और शायद पहली बार उसे समझ आया कि छोड़ देना हमेशा किसी चीज को खोना नहीं होता, कभी कभी कुछ चीजों को जाने देना भी जरूरी होता है। अगले दिन जब आरूही अपना घर छोड़ रही थी, उसने एक बार पलट कर देखा, वही घर, वही नीम का पेड़, वही बेंच। उसका दिल कर रहा था कि वह भाग कर वापस चली जाए, और शायद कुछ पल के लिए उसे लगा भी कि अगर वह रुक गई तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हम सिर्फ इसलिए रुक जाएं क्योंकि हमें कुछ छोड़ने से डर लगता है, तो शायद हम कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां हमें पहुंचना था। आरूही गाड़ी में बैठ गई। वाराणसी की गलियां धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। वह रास्ते, वह शामें, वो छोटी छोटी जगहें जहां उसने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए थे, सब धीरे धीरे उसकी आंखों से दूर जा रहा था। اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس بار وہ صرف اداسی کے آنسو نہیں تھے، وہ بس الوداع کہہ رہی تھی کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کچھ جگہ کچھ لوگ اور کچھ پل ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، لیکن ان کا چلے جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں۔ کبھی کبھی انہیں جانے دینا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کے جانے کے درد نہیں ان کے ہونے کی خوشی میں جی سکیں۔
5: تو یہ کہانی ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ جب بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے لکشیہ کی اور اگر بڑھنا ہے، تو پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں اپنے گھر سے بہت پیار ہوتا ہے نا، تو کسی کو لگے گا کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں چھوڑ کر جا سکتے، لیکن چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیے، کچھ سمے کے لیے پیچھے چھوڑنا رہتا ہے۔ کیوں؟
8: جی کھونا بھی پڑتا ہے۔
5: بالکل۔ اور آپ لوگ کیا سنا رہی ہیں؟
2: ہم لوگ ایک گانا سنا رہے ہیں۔
5: اپنا اپنا نام بتائیے۔
2: میرا نام ندا ہاشمی ہے۔
9: اور میرا نام ادیبہ زیا ہے۔
5: چلیے اسٹارٹ کیجیے۔
9: نام

0: सुफलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यशावनावन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यशावनावन्दे मातरम्।
1: अपना नाम बताओ।
2: माय नेम इज अरसलान कबीर।
1: और क्या सुना रहे हैं?
2: नात।
1: तो चलिए स्टार्ट कीजिए।
2: हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर।

खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले आला फूल, खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले आला, झूम रही है ये तो बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन

0: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। वाचन एवं संकलन था नामिता और अनामिका का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजक। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और फिर मॉर्निंग न्यूज एवं 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से।
1: It's 8 o'clock.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाफरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
5: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
2: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
6: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
7: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय सेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
2: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक

0: जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं। भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honor and protection of historic legacy of Vande Mataram. Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन सेड दैट द बीजेपी टीम इज कमिटेड टू वर्किंग विद फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन फॉर एक्सपैंडिंग द बेस ऑफ द पार्टी टू रियलाइज द रिजॉल्व ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन इन अ सोशल

0: दस्तावेजों से मिली विसंगतियों की गहन जांच के निर्देश ईआरओ एईआरओ को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले का नियमानुसार निष्पक्षता से निष्पादन किया जाए। श्री कुमार ने धनबाद, जामताड़ा और पाकुड़ के विभिन्न मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण भी किए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक माता पिता और उनके बेटे बेटी से जुड़े मामलों की सुनवाई यथासंभव एक साथ की जाए। इससे आयु, पारिवारिक संबंध, नागरिकता और दस्तावेजों का समग्र मिलान किया जा सकेगा। रांची में पुतला दहन और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को डिटेन करने पर राजनीति भी गर्मा गई है। झड़प मामले में पुलिस छात्र नेता अमीषा प्रसाद को कल पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मेयर रोशनी खलखो भी थाना पहुंचे। उन्होंने हेमंत सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
1: झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी है। बच्ची को जिस ढंग से उठा के ले गया तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की ये कोशिश कर रही है। ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे आवाज उतनी ही मुखर होगी।
0: इधर सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कुलदीप कुमार ने इस मामले में कहा कि सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में अमीषा प्रसाद के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए लाया गया।
2: सदर थाना काम क्षेत्र 286-26 में, जो कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से संबंधित मामला है, इसमें जो है दो मामला इन पर दर्ज है, जो पूछताछ के लिए लाया गया है। और ये जो है स्टूडेंट नहीं है, ये एनजीओ चलाती है और उसी क्रम में जो है सो एनजीओ के काम में ही वहां गई थी।
0: इधर छात्र आंदोलन पर सरकार की कार्रवाई पर भाजपा के आरोपों पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया।
3: तो इन्हें लग रहा है कि अब तो इन्हें एक हथियार मिला था, मुद्दा मिला था कि छात्रों के जो अभी अपना भविष्य संवारने के लिए भी निकले हैं उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी से की जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो वैसे लोग जो इस आंदोलन की आड़ में छात्रों को ब्लैकमेल कर रहे थे।
0: हजारीबाग में पुलिस के खिलाफ छात्रों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज किया है। छात्रों ने पुलिसकर्मियों को गुलाब फूल और कलम उपहार स्वरूप दिया। दरअसल हजारीबाग में शुक्रवार को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, जिसमें कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। घटना को लेकर लगभग 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वापस लेने की मांग छात्र कर रहे हैं।
4: झारखंड में तमाम जगहों पर जेएनएम के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के द्वारा निहत्थे छात्रों पर जिस प्रकार लाठी चार्ज किया गया है, जिस प्रकार छात्रों को दहाड़ मारा गया है, उसमें हम लोग जो है कि अभी मौन यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यह संदेश रहेगा कि जो जिला प्रशासन या जो लोग हम छात्रों को मारे हैं उनको हम लोग एक कलम देकर के और पुष्पगुज देकर के एक संदेश देंगे कि चाहे आप लाठी बरसाए, गोली बरसाए, लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा।
0: रांची नगर निगम ने विमेंस कॉलेज, साइंस ब्लॉक मार्ग, अल्बर्ट एका चौक और वार्ड 6 के बांधगाड़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में 15 अस्थायी संरचनाओं, शास्त्री मार्केट के दो बड़े काउंटरों और सरकारी जमीन पर बनी दो स्थायी दुकानों को हटाकर सामग्री जब्त की गई, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के पास जाम और आवागमन की समस्या कम हुई। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वर्ष 2026-28 के चुनाव में पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली। उन्होंने एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष ऋतु कुमार को 84 वोट से हराया। उपाध्यक्ष पद पर राहुल गुप्ता 580 वोट हासिल कर विजयी हुए। आज गवर्निंग काउंसिल के 9 पदों के लिए मतगणना होगी।

0: हाईकोर्ट में जो वकीलों में एकता की कमी हुई है उसे वापस लाना है और बार एंड बेंच रिलेशनशिप जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। मैं समझता हूं कि मेरे अध्यक्ष पद में आने के बाद सारी चीजें सुचारू होंगी और जो भी समस्या है छोटी बड़ी उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
1: रांची में JFDCL के मीट द मेंटर कार्यक्रम में मशहूर फिल्म एडिटर असीम सन्हा ने कहा कि झारखंड के स्थानीय सिनेमा में ग्लोबल पहचान बनाने की पूरी संभावना है, जिसके लिए गांव-गांव में सिनेमा कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय कलाकारों को अवसर देने, सीट फंडिंग और फिल्म मूल्यांकन के लिए मेंटरिंग सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। देवघर राजकीय श्रावणी मेला को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर की संयुक्त अध्यक्षता में साप्ताहिक प्रेसवार्ता हुई। उपायुक्त ने बताया कि 30 जुलाई से 21 अगस्त तक 51,12,531 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण किया। अंतिम सोमवारी को लेकर प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रामगढ़ में हादसा और छात्रों के आंदोलन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, गिद्दी में राहुल दुबे गैंग के 2 गुर्गे पुलिस मुठभेड़ में घायल, 1 फरार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पुतला दहन विवाद, रांची सहित 3 शहरों में 1,000 लोगों पर केस। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, सर्दी जुकाम की एक दवा का फॉर्मूला किया प्रतिबंधित। दैनिक जागरण लिखता है, पतरातू की सीमेंट फैक्ट्री के टरबाइन में ब्लास्ट, 3 अभियंताओं की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने खरीफ और रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की समीक्षा की, कहा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता फॉर्म में विसंगतियों की जांच के दिए निर्देश, परिवार के सदस्यों की सुनवाई एक साथ होगी, नाम जुड़वाने और सुधारने का आज अंतिम मौका। रांची में पुतला दहन और मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई तेज, आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को डिटेन करने पर गरमाई राजनीति, नेता प्रतिपक्ष ने विरोध की आवाज दबाने का लगाया आरोप। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर राहुल गुप्ता ने दर्ज की जीत। झारखंड में अगले 4 दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:42 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत। दिलजीत सिंह दोसांझ, साजिद टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर 2 से।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आज तो पार्टी चाहिए,
6: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
8: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
9: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
8: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
11: और दोस्तों भाई, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म मातृभूमि से। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल की।

और दोस्तों भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत सोनू निगम और हीर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म बंटवारा 1947 से।

दोस्तों, सोनू निगम और हीर की आवाज में गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: उन्होंने एक के बाद एक जितनी मिथकीय चरित्रों की महत्वपूर्ण स्त्रियां थी उन सबके ऊपर उन्होंने लिखा, और इतना शानदार लिखा कि आज भी चाहे हम किसी भी पंक्ति को उठा लें जब बात करते हैं तो गुप्त जी एक मानक के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे जयशंकर प्रसाद की पंक्ति उठा लें या बाद के परवर्ती लेखकों कवियों की पंक्ति उठा लें, लेकिन मानक के रूप में हमारे सामने पहले मैथिली शरण गुप्त खड़े होते हैं कि उन्होंने कैसी यशोधरा गढ़ी थी, उन्होंने कैसी कैकेयी गढ़ी थी, उन्होंने कैसी उर्मिला गढ़ी थी, कैसी सीता गढ़ी थी, कैसी राधा गढ़ी थी, कैसी यशोधरा गढ़ी थी। फिर आप देखिए कि बाद के लोगों ने जब कहा कि अश्रु से भीगे अंचल पर यह संधि पत्र लिखना होगा, जयशंकर प्रसाद ने जब कहा, तब तुलना की जाती है कि गुप्त जी कहाँ तक पहुँचे थे और जयशंकर प्रसाद कहाँ तक पहुँचे। अब जैसे एक चित्र आप देखिए, कैकेयी का जिक्र हम लोग अमूमन जिस तरह से समाज में होता है एक कुटिल स्त्री के रूप में, हालांकि राजरानी थी, कैकेयी के गुण इतने ज्यादा थे, माइथोलॉजी में भी मिथक में भी कैकेयी के गुण इतने ज्यादा बताए गए हैं कि वह एक समर्थ सशक्त युद्ध कला में पारंगत स्त्री थी जो दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कैकेयी को वरदान ही कैसे मिला था, अगर इस प्रक्रिया को जान लें कि वो वरदान जिसके कारण राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी लिख दी गई, वह कहानी घटित ही क्यों हुई अगर कैकेयी इतनी सशक्त ना होती, इतनी पावरफुल चरित्र नहीं होती माइथोलॉजी में, तो वरदान उसे ना मिलता, इतनी योग्य कुशल ना होती। उसने रथ के पहिए में अपनी उंगली लगा दी और इस तरह से आप समझिए ये रथ केवल मिथकीय रथ है, ध्यान रखिएगा। अभी जब हम सभ्यता संस्कृति के विकास की बात करते हैं तो चैरियट इज मतलब बहुत बड़ा एक उपकरण है सभ्यता के ट्रांसफॉर्मेशन का, और उस रथ के संचालन में कैकेयी की भूमिका कोई छोटी भूमिका नहीं है। जब आप हैरोल्ड इनिस को पढ़ते हैं, मार्शल मैक्लुहान को पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का विकास कैसे सभ्यता के विकास को संभव बनाता है। और उस सभ्यता के विकास में एक एक इंस्ट्रूमेंट का, इस घड़ी का, आपके कैलकुलेटर का, आपके कैलेंडर का, आपके सूरज घड़ी का, और इस रथ के पहिए का, रथ के पहिए में भी जो पत्थर का रथ था उसके पहिए का, लोहे के रथ के पहिए का, बेत के रथ के पहिए का, लकड़ी के रथ के पहिए का, अलग अलग सभ्यता के विकास को गति देने में भूमिका है। और उस रथ के पहिए में कैकेयी अपना हाथ लगा देती है और दशरथ को रथ से गिरने से बचाती है और युद्ध कौशल में वो युद्ध संचालन करते हुए जीत जाते, तब खुश होकर ये वरदान मिलता है। कितने उदाहरण मिलते हैं स्त्रियों के युद्ध स्थल पर जाने के, बहुत कम। उसमें कैकेयी थी, उस कैकेयी के मन में किस तरह से दुर्भावना आ गई राम के प्रति और एक लोभ आ गया अपने पुत्र मोह में भरत के प्रति। पुत्र मोह की ही कहानी महाभारत है,
2: बिल्कुल
1: ध्यान रखिएगा, पुत्र मोह एक ऐसा डायमेंशन है जो महाभारत में भी है और रामायण में भी है। फर्क इतना है कि रामायण स्त्री के पुत्र मोह की कहानी है और महाभारत पुरुष के धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की कहानी है। तो उस पुत्र मोह के कह सकते हैं आरोप से या उसके आक्षेप से या उसकी लांछना से स्त्री के लिए जिस एक सामाजिक हेय और निंदनीय पदबंधों का निर्माण होता है, धृतराष्ट्र के लिए तो वैसा नहीं हुआ। मैं ये नई बात आज आपके सामने कह रही हूँ, कैकेयी जिस तरह से एक कलंकित स्त्री के रूप में आ गई, सारे गुण उसके पीछे चल गए। धृतराष्ट्र तो अवगुणों के कह सकते हैं कमियों के खान थे, कैकेयी तो नहीं थी। कैकेयी और

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही

0: सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: साथियों आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को सलाम करने के साथ साथ युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं बटला हाउस, इस फिल्म का गीत नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी प्राक की आवाजों में। तनिष्क बागची और देव कोहली ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और विशाल शेखर का।

मुबारका फिल्म का गीत सुनिए मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, गौरव रोशनी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

नेहा कक्कर और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची का संगीत।

तुषार कपूर की आवाज में तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफर था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी पिट जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और श्याम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नहीं नहीं के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।
0: आज

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

0: हुआ है।
1: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर

यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों, सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
3: Nine, eight, seven, six.

हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय केसरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं ना, मीठे शब्द जीवन में मिठास घोल देते हैं और प्यार भरे बोल रिश्तों को मजबूत बना देते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जिंदगी में हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में प्यार, सम्मान और अपनापन बना रहे, लेकिन

लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इन रिश्तों को मजबूत बनाने में हमारे शब्दों की कितनी बड़ी भूमिका होती है? दोस्तों, एक मीठी बात किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी दुखी मन को सहारा दे सकती है और कभी कभी टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकती है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में हम बातें करेंगे मीठी वाणी रिश्तों की सबसे मजबूत नींव। तो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आप बने रहें और सुनते रहें कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत आदत की जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जिसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमारा आज का विषय है मीठी वाणी, रिश्तों की सबसे मजबूत नींव। दोस्तों, शब्द छोटे होते हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। एक प्यार भरा शब्द किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, किसी परेशान व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है और टूटे रिश्ते को भी संभाल सकता है। वहीं दूसरी ओर कठोर और अपमानजनक शब्द दिल पर ऐसी चोट कर सकते हैं जिसका दर्द लंबे समय तक बना रहता है। दोस्तों, मीठी वाणी का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है, इसका अर्थ बात करते समय सामने वाले के प्रति प्यार, सम्मान, संवेदनशीलता और अपनापन रखना है। दोस्तों, हमारे घर परिवार में ही देखा जाए तो सुबह किसी अपने से प्यार से कहा गया एक छोटा सा वाक्य, आप कैसे हैं,

सहकर्मियों से सम्मानपूर्वक बात करना, बच्चों की गलतियों को प्यार से समझाना, बुजुर्गों से आदरपूर्वक संवाद करना और जरूरतमंद व्यक्ति से संवेदनशीलता के साथ बात करना, ये सभी हमारे व्यक्तित्व की सुंदरता को दर्शाते हैं। कभी कभी सामने वाला हमारी बात से सहमत नहीं होता, ऐसे समय में भी हम अपनी बात शांति और सम्मान के साथ रख सकते हैं। असहमति हो सकती है, लेकिन असम्मान जरूरी नहीं है। दोस्तों, आज के इस व्यस्त जीवन में हम अक्सर एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे से संवाद करने का हमारे पास समय नहीं होता। ऐसे में जरूरी है जब भी बोले सोच समझकर बोले, क्योंकि रिश्तों को हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कई बार सम्मान से बोले गए दो शब्द ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक छोटा सा संकल्प लें। हम गुस्से में भी अब शब्दों से बचेंगे, बड़ों से आदरपूर्वक बात करेंगे, बच्चों को प्यार से समझाएंगे और अपने हर रिश्तों में संवाद और सम्मान की मिठास बनाए रखेंगे। दोस्तों, याद रखें, शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में विश्वास होगा, बातों में सम्मान होगा तो दिलों में अपनापन होगा। इसलिए मीठी वाणी केवल बोलने का तरीका नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने की कला है। इसलिए इस खूबसूरत संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और इस पड़ाव में हम जानते हैं सबसे पहले अपने शहर हजारीबाग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बतला दें कि नगर निगम हजारीबाग के सभागार में शनिवार को सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आरओ वाटर प्लांट जल उपचार संयंत्रों के संचालकों के साथ बैठक की गई। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने सभी आरओ वाटर संचालकों को झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 204 और 209 तथा पेयजल और रिवर्स आरओ वाटर उपचार संयंत्र संचालन व अनुज्ञप्ति नियमावली 2024 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी आरओ वाटर प्लांट का नगर निगम से पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, सहायक नगर आयुक्त ने शनिवार को अमृत योजना अंतर्गत हजारीबाग शहर जलापूर्ति योजना के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान छड़वा डैम का जायजा लिया गया तथा जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। इसके पश्चात नूरा स्थित जल मीनार का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोलघट स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के 288 आवासों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और दोस्तों, आपको बतला दें कि शनिवार शाम करीब 4 बजे शहर के कारमल स्कूल रोड स्थित रांची पटना रोड NH 33 पर अचानक पेड़ की एक बड़ी डाल सड़क पर गिर गई। इस हादसे में स्कूटी से संत कोलंबस कॉलेज की ओर जा रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। डाल गिरने से महिला सड़क पर गिर गई, वहां बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे ई रिक्शा से निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। और आपको बतला दें कि खेल प्रेमियों के लिए रविवार को डांट पिचरी फुटबॉल

फुटबॉल मैदान में रोमांचक मुकाबले का आयोजन होगा। यह कटकमसांडी रिटायर्ड 11 और कुटरा रिटायर्ड 11 के बीच फुटबॉल मैच खेला जाएगा। दोस्तों, यह मुकाबला आज दोपहर 2:30 से शुरू होगा। आयोजकों के अनुसार मैच का उद्देश्य मैदान से जुड़े पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों को एक बार फिर खेल के प्रति सक्रिय करना है और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना है। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उसके पहले आइए सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने राज्य से जुड़ी खबरों को। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बतला दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली मामले में सीआईडी ने गिरोह के मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी को शनिवार को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। सीआईडी अब तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे के नेतृत्व में गठित 17 सदस्यीय एसआईटी पूरे सिंडिकेट के जड़ों तक पहुंचने की तैयारी में है। अभय तिवारी को सीआईडी ने तीसरी बार रिमांड पर लिया है। इससे पहले 2 बार उससे जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले में पूछताछ की गई थी। अब सीजीएल मामले में रिमांड पर लिया गया है। और दोस्तों, आपको बतला दें कि रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के हेहल स्थित मां छिन्मस्तिका सीमेंट एंड और इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार रात 11 बजे टरबाइन ब्लास्ट में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान धनबाद निवासी फैक्ट्री के शिफ्ट इंचार्ज संजीव कुमार केशरी, जागेश्वर बिहार बोकारो निवासी विनीत महतो और गढ़वा रोड नगर उटारी निवासी अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। एक कर्मचारी हजारीबाग के तरुण रब्बानी गंभीर रूप से घायल हैं। रांची के देव कमल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

और दोस्तों, राज्य स्तरीय खबरों की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बतला दें कि इस बार झारखंड के सरकारी स्कूल रक्षाबंधन पर 28 अगस्त को खुले रहेंगे। उस दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित गतिविधियां होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों को इसके बदले क्षतिपूरक अवकाश देने की बात की गई है। और दोस्तों, आगे बताते हैं हम आपको कि जेपीएससी के पुनर्गठन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। इसमें वर्तमान घटनाक्रम और सीआईडी जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि जेपीएससी अध्यक्ष और तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में जेपीएससी निष्क्रिय हो चुका है। आने वाले समय में आयोग को कई परीक्षाओं का संचालन करना है, जिसके लिए जेपीएससी का पुनर्गठन जरूरी है। हालांकि प्रस्ताव में कोई नाम नहीं सुझाया गया है।

दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इस पड़ाव पर हम जानते हैं कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। सबसे पहले हम आपको बतला दें कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में लंबे समय से चले आ रहे गोरखा पहचान और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे के अस्थायी समाधान का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ शनिवार को हुई अहम बैठक के बाद केंद्र ने समाधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 16 ट्रिब्यूनल और अपीलीय निकायों में चल रहे मामलों की जानकारी के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल्स डेटा ग्रिड तैयार करेगी। हाल में ही संसद में पारित ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल में इसका प्रावधान किया गया है। ग्रिड में संबंधित ट्रिब्यूनल्स के मामलों से जुड़ी जानकारी का केंद्रीकृत रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। और दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करें तो हम आपको बता दें कि अमेरिका कनाडा में ट्रेड डील टूट गई है। कनाडा ने पहली बार राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर डील छोड़ दी है। इसके बाद अमेरिका ने 1.19 लाख करोड़ के कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। जवाब में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी उतनी ही रकम के अमेरिकी सामानों पर 50% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के इतिहास में क्या था खास। दोस्तों, 23 अगस्त को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है और अक्सर हम सभी इतिहास के विषय में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ते भी हैं जो 23 अगस्त के इतिहास से संबंधित है। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में अब हम जानते हैं कि 23 अगस्त को इतिहास में क्या हुआ था खास। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बता दें कि आज के दिन 1456 में जर्मनी के योहानिस गुटेनबर्ग ने आधुनिक ढंग के दुनिया के पहले छापखाने से बाइबल की पहली प्रति छापी जो गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। आज के दिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जापान ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। आज के दिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टेलिनग्राद की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज के दिन 2011 में चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगाया था और मार्क की लंबाई का व्यापक उपग्रह अध्ययन पूरा किया था। आज के दिन 2001 में पुनिया हत्याकांड जिसमें भारतीय राजनेता रेलूराम पुनिया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। अब आपको बतला दें कि

आज के दिन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ था? तो आज के दिन 1922 में बेसबॉल खिलाड़ी जॉर्ज केले का जन्म हुआ था। आज के दिन 1981 में स्पेनिश फुटबॉलर कार्लोस क्यूलेर का जन्म हुआ था और 1981 में इवोरियन फुटबॉलर स्टेफन लोबोए का जन्म हुआ था। और आज के दिन 1982 में अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी स्कॉट पालगुटा का भी जन्म हुआ था। अब आपको बतला दें कि आज के दिन किन लोगों की मृत्यु हुई थी। तो 1997 में ग्रेनाडियन शिक्षक, राजनेता और ग्रेनेडा के पहले प्रधानमंत्री एरिक गैरी का निधन आज के दिन 1997 में हुआ था। 1997 में आज के दिन अंग्रेजी बायोकेमिस्ट क्रिस्टलोग्राफर और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन केंडू का भी निधन हुआ था। और 1982 में अमेरिकी जैव रसायनविद और अकादमिक नोबेल पुरस्कार विजेता का स्टेफन फोर्ड मूर का निधन आज के दिन हुआ था। दोस्तों, आज के प्रमुख दिवस और उत्सव के बारे में हम आपको बतला दें तो आज के दिन दास व्यापार और उसके उन्मूलन के याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय दिवस की याद आज के दिन की जाती है।

दोस्तों आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। भारत में हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिलाता है जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सफल सतह पर सफल स्पॉट लैंडिंग की थी। यह उपलब्धि केवल भारत के वैज्ञानिक इतिहास का गौरव अध्ययन ही नहीं थी बल्कि इसने पूरी दुनिया में भारत की अंतरिक्ष क्षमता का भी परिचय कराया था। तो दोस्तों आज के इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम कहना चाहेंगे कि चांद पर पहुंचना मंजिल नहीं, नए मंजिलों की शुरुआत है। भारत का अंतरिक्ष सफर जारी है और भविष्य की उड़ानें हमारे हाथ में हैं। इसी संदेश के साथ आप सभी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इन्हीं जानकारियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, एक गीत हमारे आसपास गूंजने लगता है जो कहता है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
0: आवारगी का ये अंदाज लेकर के अपनी कलम के सहारे जिन्होंने इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो अमर नाम है कवि शैलेंद्र का।
1: जी हाँ, शैलेंद्र साहब की ये जन्मतिथि 30 अगस्त बहुत सी स्मृतियों के द्वार खोल देती है। शैलेंद्र जी के गीत वो गीत हैं श्रोताओं, जो हमारे आसपास की जिंदगी को बयान करते हैं, जिन्होंने जीवन का जो गहरा दर्शन है उसे बहुत सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बल्कि जयंत जी, मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं उसकी कई बार तो पंक्तियां जैसे हमारे लिए रोजमर्रा में लोकोक्तियां या मुहावरे तक बन चुके हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। मानवीय संबंधों में जो क्लिष्टता होती है, कई बार जो जज्बाती मुश्किलें देखने को मिलती है और उनकी वजह से जितने अवसाद इंसानों को झेलने पड़ते हैं, उन सभी को बड़ी सहजता से अपने कलम के सहारे उन्होंने अपनी रचनाओं में उंडेला था और हम सबके दिल को छू लिया था।
1: बिल्कुल, और शैलेंद्र जी की स्मृति को हम आज नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
0: जीना इसी का नाम है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो शैलेंद्र जी के छोटे बेटे हैं, और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें साझा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा, और एक गीतकार, फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को, हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूं और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
2: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दिनेश जी, एक पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा।
2: मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे
0: जी,
2: उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे, कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को चौंका सा दिया था इन सब चीजों ने
0: जी।
2: क्योंकि हम लोगों के घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एसडी बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है। क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए हैं या दिमागी तौर पे आदमी थक जाते।
0: जी जी जी।
2: लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे, हम लोग सब बच्चों के साथ, वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो खार में हम जब उन्होंने बंगला ले लिया था
0: जी जी,
2: तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे।
0: अच्छा।
2: वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं, और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे
0: जी,
2: वो चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने।
0: आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है, वो थे शैलेंद्र जी, और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम लोगों की भी भर आती हैं, तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना।
2: देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे
0: जी,
2: तो उनके गाने सुनते तो रहते थे, हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे, लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया और फिर

0: और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है
1: जी, जी.
0: कि जो भी गाना उनका ले लें, आप एक परत अगर उठा दें
1: जी, जी.
0: जो नॉर्मल वर्ड से
1: जी.
0: तो आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और पता चलेगा. हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं. मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था. जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा जूता है जापानी, तो उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे.
1: क्या बात है.
0: उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया. मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे अब सिंहासन, वो कोई भी आम आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो.
1: उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है. एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती और वो है फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था और आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा है. वही हीरा मन और वही सारी चीजें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी.
0: मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की
1: जी,
0: तो जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी,
1: मारे गए गुलफाम,
0: हाँ मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी. उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी, फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को
1: जी.
0: तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं
1: जी, जी जी जी.
0: तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको. तो एक जुनून सा सवाल था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही. फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था. बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो एक साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए
1: जी.
0: उस फिल्म को 5 साल लग गए और जब तक फिल्म कम्प्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा. और जो भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में और फिल्म कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं. तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी. जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे ये 3-4 महीने में वो इजिली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस. और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा. और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली.
2: अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र. मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए.
1: गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता, तीसरी कसम.

0: तो श्रोताओ, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी,
1: जी।
0: हुस्नलाल जी और भगत राम जी संगीतकार खयाम के गुरु थे, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया, और इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी,
1: जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था, और जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते थे।
0: क्या बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं, सरगम के सितारे, हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था। इसके कुछ संपादित अंश आज के विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वर निम्मी मिश्रा का है। तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग।

1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुसनलाल भगत राम ने। इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

0: वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खय्याम, जो स्वयं संगीतकार हुसन लाल भगत राम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं।
1: फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी, तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु, और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे, और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला, पहले स्वर सा जिसे कहते हैं उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और ताल का, तो उन्हीं से ज्ञान मिला, दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई। तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले, और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है, बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया, तो ये उनका। और फिर धुने उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुने बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत,
0: मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था।
1: जी हाँ, बहुत सरल होता था,
0: और फिर जब सरल हो, सुरीला हो, तो असर की तो क्या
1: बात, यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है।

0: प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुसनलाल भगतराम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुसनलाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं।
1: इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला, और एक जो खास बात थी कि पंजाबी ठेका, इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया, और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे, धुने तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे, और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहता कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई। पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से, और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो, तो उस समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई कई लोग बैठे थे, उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुसन लाल था ना
0: जी हाँ,
1: तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न,
0: वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है।

फिल्म बड़ी बहन के साथ हुसनलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8-8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में निर्मित सावन भादों, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं।

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तो वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सोचता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
0: जी।
1: और फिर उन्हें बता देते थे कि ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे। राइटर लिखते थे, तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पे लिख दिया, इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुनें काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है।
0: अच्छा।
1: इस तरह की जो है वो धुनें बस जैसे आई बैठे के दिमाग में, तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगत राम जी ने उसमें।
0: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
1: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
0: जी,
1: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
0: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिने संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वॉयलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे, जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए, उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
0: जी
1: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
0: जी।
1: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
0: अच्छा, तो
1: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में। ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है ये, क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे।
0: अच्छा,
1: कि वाह वाह, ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनियां हारमोनियम पे बजाते थे
0: जी।
1: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते
0: थे। और उसमें हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।
1: खैर, उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
0: जी।
1: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम, मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे, एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था, एक भक्तराम जी के पास होता था। दोनों भाई मिलकर काम करते, बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे, अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस्ट के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे, क्योंकि एक तख्लीक करना होता है, एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था, मैं मुझे कहते थे तू आजा पुत्र, पुत्र आजा, तू आजा, काका आजा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना, तो वो भी जालंधर के थे, मैं भी जालंधर का सब, तो वो कहते तू बैठ, तू ना जावा। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
0: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे, तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए ही नहीं थे, उन्हीं की ये जोड़ी थी, तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ।
1: देखिए, ये इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने
0: जी।
1: वो बड़े, मैं कैसे पूछ सकता था कि
0: नहीं, मैं पूछ मैं अपनी जानकारी,
1: मैं तो उनके सामने मैं तो कुछ, मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा, मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है,
0: अरे क्या
1: इतने बड़े वो थे।

0: गुणी कल्पनाशील संगीतकार के साथ साथ एक हंसमुख खुश मिजाज सरल इंसान भी थे हुसनलाल जी और भगत राम जी। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जो इनके शिष्य भी थे गुरु की यादों को ताजा करते हुए।
1: पंडित हुसनलाल जी को मैं जब मिला गुरु जी के पास इतनी पिक्चरें नहीं थी लेकिन म्यूजिशियन आला ग्रैंड और टीचर आला ग्रैंड भगत राम जी भी और हुसनलाल जी भी। हुसनलाल गुरु जी और भगत राम गुरु जी इतने लायक थे और इतने डाउन टू दी अर्थ और एक तो कंपोजर इतने एक्सीलेंट थे और फिर उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि हार्ड वर्क और रियाज बहुत जरूरी है और रियाज बहुत करवाते थे और रियाज खुद बहुत करते थे गुरुजी।
0: मतलब अभी मतलब जब वो गुरु थे सिखाते थे तो भी रियाज करते थे लगातार
1: बहुत अच्छा। बहुत जबरदस्त 24 घंटे मैं जब भी गया हूँ इनके यहाँ तो मैंने इनको या गाते हुए देखा है या वायलिन बजाते हुए देखा है
0: अच्छा।
1: गुरु जी को
0: पूरी तरह संगीत में डूबे हुए थे
1: बिल्कुल
0: अच्छा। आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत
1: है जी?
0: आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो?
1: मैंने गाए थे
0: हाँ, कोई खास
1: है जी?
0: कोई खास गीत जो आपको याद हो?
1: अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसे याद नहीं। पहाड़ी में इनके दो तीन गाने थे
0: जी,
1: इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे
0: अच्छा।
1: और वो इनकी लास्ट फिल्म थी
0: अच्छा,
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा, लास्ट।
1: लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या दी है ना वो बहुत वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई
0: अच्छा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और कोई खास बात?
1: और इतने अच्छे जेंटलमैन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव, इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद ये लोग हमेशा हंसते रहते थे
0: अच्छा।
1: हमेशा खुश रहते थे और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए
0: हाँ, जो मतलब
1: सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ है जी?
0: जी
1: इन्होंने गाया ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा जो लिसनर्स थे बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इंक्वायरीज की कि सिंगर कौन थे जिन्होंने गाया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था यहूदी मैनियन
0: जी
1: जब आए थे यहाँ उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा इतना बड़ा आर्टिस्ट ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं ये।
0: ये तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते थे।
1: वायलिन भी बजाते थे
0: और दोनों बराबर दर्जे की उच्च दर उच्च कोटि की।
1: और देखिए अगर 6 घंटे रियाज करते थे गाने का इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था। मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे इतना मतलब लगे हुए थे म्यूजिक में कि इनको कुछ होश नहीं रहती थी।
0: हाँ जी आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे उनकी बनाई तर्ज कुछ याद आ रहा है क्या?
1: उनके गीत पुराने जो थे बहुत जो पॉपुलर हुए
0: जी हाँ
1: बड़े अच्छे अच्छे गीत थे हालांकि वो फिल्मी गीत थे।
0: आप कुछ गुनगुना सकते हैं कोई? बिगड़ी बनाने वाले चुप चुप खड़े वो दूर जाने वाले कितने सारे
1: मुझे याद है मैं तो बचपन में गाता था वो हाँ, बिगड़ी बनाने वाले

0: कि ये जो मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, के वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोदवादिका जरीन शर्मा जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलेडी कभी मरती नहीं है
1: जी।
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए, और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता था, हद के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी, आज सालों साल हो गए पर आज भी एवर ग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती
1: जी,
3: क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
3: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें
1: जी।
3: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के, तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं
1: जी। हाँ।
3: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है
1: जी।
3: ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया
1: जी।
3: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाए। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है
1: जी, जी।
3: आपको अपने में कितनी लगन है वो लगन काम करती है
1: जी।
3: हर तरह से हर नए नए चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना
1: जी। हाँ।
3: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे।
1: हाँ जी।
3: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बाप रे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसैनलाल भगत राम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसैनलाल भगत राम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम चमकदार नमूना था।

फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

0: ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत उनका अच्छा था। और फिर वो देखिए वो भी आपने वो भी गाना आपने सुना होगा ना, तूने मेरा यार ना मिलाया।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत।
0: तूने मेरा यार ना मिलाया।

हुसनलाल भगतराम सिने संगीत आकाश की धूम केतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखरा कर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दी गए ऐसी नायाब धुनी कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुनी गुनगुना कर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को।

0: संगीतकार जोड़ी हुसनीलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम की सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई।
1: अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा, जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन, हम दोनों ही का
1: आपको नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम
2: की। संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, पीके मिश्रा के बोल, एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे अल्लाह दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत, कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की इबारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे, सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामुखा संसार, पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को ये हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर, हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे
1: जाएंगे।
0: अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे
1: खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे।
2: अरे दीदी बच्चा थोड़ी है।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। पर हम

0: बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे
1: बजवाएंगे।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की

0: के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी, और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है, तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है, और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पर जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं, और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है, और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हो, यानी चेचक के दाग हो, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा, बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा परियां चांद सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दी शुभकामनाएं, कहा विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल ने कहा उपलब्धियां देश के लिए गर्व। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का सोशल मीडिया हैंडलर पुलिस जांच के दायरे में, रांची साइबर पुलिस ने नोटिस भेजा। झरिया के भगतडीह में फिर धंसी जमीन, दर्जनों घरों में दरारें, प्रभावित परिवारों को बीसीसीएल क्वार्टर में शिफ्ट करने की तैयारी। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया नमन, भाषा संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान को किया याद। और देवघर में श्रावणी मेला की चौथी और अंतिम सोमवारी की तैयारी पूरी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराना प्राथमिकता। अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

0: स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: आपने सरकार की बात पे भरोसा किया, मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा, और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारतीय वैज्ञानिकों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की निरंतर प्रगति और उपलब्धियां देश के लिए गर्व का विषय हैं। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अब सोशल मीडिया पोस्ट भी पुलिस जांच के दायरे में आ गई है। रांची साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच नाम के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सोशल मीडिया संस्थान को नोटिस भेजा है। यह नोटिस बीएनएस की धारा 94 के तहत जारी किया गया है। इसी मामले में अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया संस्थान से अकाउंट संबंधित जानकारी मांगी गई है। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों का असर अब राज्य के उन इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है जिन्हें कभी नक्सल गतिविधियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है।

0: उत्तराखंड सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का भी राशि दी गई है और डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ वहां फोर्स भी रहेगी और इससे और फिर ग्रामीणों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, इससे नक्सल पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।
1: साइबर अपराध के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छापामारी अभियान के दौरान पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के झरिया में एक बार फिर भूधसान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बस्ताकोला एरिया 9 अंतर्गत भगतडीह स्थित पुराने आरएसपी कॉलेज के पीछे कामिनी कल्याण क्षेत्र में कल अचानक जमीन धंसने से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद इलाके के दर्जनों घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। मामले की सूचना मिलने पर बस्ताकोला एरिया के महाप्रबंधक एसके गायकवाड़ और धनबाद के मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली।
2: कि एक घर में 2-3 कमरों में दरार आई, तो ये कहना कि ये घटना ब्लास्टिंग के कारण हुई है ये मानने योग्य नहीं। हमारी टीम जाके उन लोगों के प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावित घरों से सर्वे कर लेगी और उनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनको जो स्कीम है उसके तहत उनको जो सुविधाएं प्रदान की जानी है वो उनको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
1: आज पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, आदिवासी भाषा कला और संस्कृति के उत्थान के पथ प्रदर्शक महान शिक्षाविद लेखक और कलाकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर शत शत नमन। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड की माटी आदिवासी संस्कृति भाषा और लोक परंपराओं को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का योगदान सदैव अमर रहेगा। रांची में पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के मुंडारी भाषा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मनोहर ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। वे भाषाविद, संगीतकार, शिक्षाविद और लोक कलाकार के रूप में अपनी अलग पहचान रखते थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और भाषा संस्कृति के संरक्षण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपये प्रति किलो है। श्रावणी मेला की चौथी और अंतिम सोमवारी के सफल एवं सुरक्षित संचालन को लेकर देवघर में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराना प्राथमिकता है।
3: हर कोई यही बोल रहा है कि फोर्थ मंडे के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा है। बीच में एक समस्या आई थी जब कुछ मजिस्ट्रेट्स हमारे यहाँ से चले गए थे, बट अभी स्टे लगने की वजह से हमारे पास वो समस्या नहीं है और हम लोगों ने जो सुरक्षित मजिस्ट्रेट्स थे उनको भी हम लोगों ने यूज करने का प्लान कर लिया था। तो बेसिकली किसी भी तरीके से हमारी तैयारी सोमवार को लेकर कम नहीं है।
1: और अब मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल ने कहा, उपलब्धियां देश के लिए गर्व। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का सोशल मीडिया हैंडलर पुलिस जांच के दायरे में रांची साइबर पुलिस ने भेजा।

0: नोटिस। झरिया के भगतडीह में फिर धंसी जमीन, दर्जनों घरों में दरारें, प्रभावित परिवारों को बीसीसीएल क्वार्टर में शिफ्ट करने की तैयारी। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया नमन, भाषा संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान को किया याद। और देवघर में श्रावणी मेला की चौथी और अंतिम सोमवारी की तैयारी पूरी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराना प्राथमिकता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उतरा था और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे चंदा मामा के संग संग, हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना, कोई बोल रहा वहां परियां रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारी जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया, हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है, तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है, हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहां न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी, वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा, सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है, कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था, हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजर आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ये मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में इन्होंने लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा, निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई, आज माझा पाड़साला झोप का ग येत नाही, ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे। और ऐसा ही हमारी एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है, लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं, आपको पहचानना है आवाज किसकी है और

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे हम। स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके दो बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का जमाना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में मैं चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वो ही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां से चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना हो गई कब डूबेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी हैं। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपने ही आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं, या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं? साथ ही बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: डोंग तकतन्या
1: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती, कहती चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है। चांद से महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे एक और साथी कहने की ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है, और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा। चंदा

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है, तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है, तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारी एक और साथी कहते हैं कि बहने चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं। बहने चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कहने के बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेटयान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या। गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है, वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारसमणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है। वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है। और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काटती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकल कर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं। और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी और हमें ये भी बताई कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ। जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं तो कई बार हमारी नजर चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर आचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि

विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: AIR.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉ. मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ. सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से दो केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
3: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन के हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

अड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में ऐसा अनुकूल माहौल तैयार किया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खूबियां भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करती है।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: उच्चतम न्यायालय झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रश्न पत्रों की छपाई, कोडिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण तथा ओएमआर के संग्रह, स्कैनिंग और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की जांच का अनुरोध किया है। मूल ओएमआर, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग करते हुए कहा गया है कि पहले स्वतंत्र जांच से गड़बड़ी का प्रभाव तय हो, उसके बाद परीक्षा परिणामों पर निर्णय लिया जाए। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र राशन कार्ड लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जांच में राज्य में 6,29,973 लाभुक अपात्र पाए गए हैं। इनमें से करीब 1,63,000 यानी कि 26% लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शेष करीब 4,66,000 मामलों में कार्रवाई 25 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने 31 अगस्त तक अपात्र नाम हटाने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर राज्य के खाद्यान्न आवंटन पर असर पड़ने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने आज वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से मुलाकात कर नाराजगी जताई। विधायक ने छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को अन्याय के खिलाफ विरोध और अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है।
2: झारखंड की वर्तमान सरकार जो है वह हम में आज डूब चुकी है और जैसे भी हो इन प्रकारों ने चाहे तो प्रशासन के द्वारा चाहे अपने भेजे हुए सामाजिक तत्वों के द्वारा छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार ने किया, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो यही आग्रह करूंगा सरकार से कि चेत जाए, संभल जाए।
0: रांची पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्राप्त किसी भी समाचार या सूचना को बिना सत्यापन के प्रसारित नहीं करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्व झूठी और भ्रामक खबरों के जरिए घृणा, वैमनस्य और तनाव फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी सूचनाएं कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। पुलिस ने नागरिकों से संवेदनशील या विवादित सूचनाओं की सत्यता और स्रोत की जांच करने तथा अफवाहों से बचने को कहा है। भ्रामक या तनाव उत्पन्न करने वाली सामग्री मिलने पर उसे साझा करने के बजाय पुलिस या प्रशासन को सूचित करने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की गई है। राजधानी रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी ऑटोमोटर वर्कशॉप में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़े 6 वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफर फानी के बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी, मिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेज बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जूनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अरपा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल, खय्याम का संगीत, विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम। और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: के माने, अरे चीतक तो हमारी सहन के सामने रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने। कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। TOY TOY TOY, तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY BOY
1: धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें काफी है।
2: चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बॉय के माने लड़का लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: को छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रही है। BOY TOY 8Y के माने लड़का, TOY BOY के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
3: TOY BOY
0: TOY BOY होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। TOY TOY
0: होता है, TOY के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
3: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
3: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
3: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
3: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। TOY TOY देख रहा था।
3: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने यार स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
3: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
3: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
3: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
3: मेरी मम्मी तो फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
3: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?
3: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
0: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
4: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
3: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
0: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
3: तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
3: हाँ, मेरे भी।
0: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
3: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
0: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
3: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो।

0: ना ना नहीं नहीं ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
1: अच्छा
0: हाँ अब बैठो सीट पर। उफ़ नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
1: अच्छा ले लिया।
0: हाँ बस अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा छोड़ू?
0: नहीं नहीं अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे
1: ऐसे।
0: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
1: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी, वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
1: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
1: अच्छा
0: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
1: हाँ अब कहो ना गो।
0: गो।
1: गिरा।
0: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
1: कहाँ हटाए?
0: लगी तो नहीं?
1: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
1: अच्छा
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
1: हाँ तुमने किसे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
1: नहीं।
0: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
1: पापा ने।
0: नहीं
1: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
1: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
1: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
1: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया, अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: ताकि चूहे ना ले जाए। तुम चूहे।
1: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
0: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: सी ही कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, बाइक ही तोड़ा मेरा।
0: बीओ
2: नहीं, बीओ वाई,
0: बीओ वाई, बीओ वाई।
2: जानती हो, जानती हो, हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ।
0: चल
3: चल
2: आजा,
3: जल्दी चलो,
2: आ जाओ।
0: अगर हमारे भी पंख होते,
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती,
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं, पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश, आगे चलो, आगे चलो, और आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो, पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
0: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
0: फिर
2: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है, बैड बॉय। फिर मारा, ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
0: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देख कर हंसते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
0: क्या?
2: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
0: हाँ थे तो?
2: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए, वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
0: उन्होंने शादी की होगी।
2: शादी? तुम्हें कैसे पता?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
2: अलग? अलग क्या?
0: उफ़ो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। बी ओ वाई टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना, और बस।
2: तुम्हें कैसे पता?
0: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया।
1: झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
0: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
2: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
0: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
2: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
0: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी, मम्मी भी कहती है ना लड़कियों को शर्माना चाहिए।
2: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
0: और तुम?
2: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
0: डरपोक डरपोक।
2: खुद शर्मीली नहीं है?
0: नहीं, तुम

0: तब तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए।
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूंगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूंगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूंगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: में खेलेंगे? हमारे बाग में वहाँ कोई नहीं है ना।
1: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
0: नहीं तो मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
2: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
0: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
2: तो चलो फिर।
0: चलो
2: चलो।
0: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
2: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
0: अगर ये सचमुच की कार ही होती
2: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
0: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते।
2: हाँ, कार मैं चलाती।
0: अरे लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
2: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
0: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
2: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
0: क्या पौधों को सींचेंगे?
2: वो क्या होता है?
0: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
2: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
0: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
2: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
0: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर।
2: चलो आओ। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
0: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
2: तुम्हें कैसे मालूम?
0: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
2: कहाँ?
0: यहाँ तो आओ।
2: अरे ये तो वही बुलबुल है।
0: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे अलग मकान में।
2: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
0: अब क्या करें इसका?
2: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
0: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कही की?
2: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी।
3: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मुँह थी, उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था। फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
2: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
0: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
2: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
0: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
2: तुम कहाँ जा रहे हो?
0: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
2: रुमाल?
0: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
2: डैडी मारेंगे?
0: वो कुछ नहीं कहेंगे।
2: झूठ
0: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
2: क्यों?
0: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
2: अच्छा लपेटो फिर।
0: ना तुम लपेटो।
2: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
0: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
4: नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
2: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
0: लो।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
0: मुझे भी।

0: मुझे पहले ही आ गई।
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाफ से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं। मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को। मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना,
0: उससे क्या होता है?

0: मामा जी की शादी है।
1: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
0: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
1: क्यों?
0: अफ़ो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
1: फिर?
0: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
1: मुझे भी नहीं।
0: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से। झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे। तुम डैडी से डरते हो?
1: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
0: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। टीओ वाई
0: वाई
1: नहीं टीओ।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखे।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ,
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: जब मैं तुझसे नहीं बोलता कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करती है ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, भी होगी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी? तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा।

जो मेरा मन चाहे तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे ऐसे।

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये है विविध
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में ऐसा अनुकूल माहौल तैयार किया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है। उच्चतम न्यायालय झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा। याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रश्न पत्रों की छपाई, कोडिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण तथा ओएमआर के संग्रह, स्कैनिंग और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की जांच का अनुरोध किया है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र राशन कार्ड लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जांच में राज्य में 6,29,973 लाभुक अपात्र पाए गए हैं। इनमें से करीब 1,63,000 यानी 26% लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शेष करीब 4,66,000 मामलों में कार्रवाई 25 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है। रांची पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्राप्त किसी भी समाचार या सूचना को बिना सत्यापन के प्रसारित नहीं करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्व झूठी और भ्रामक खबरों के जरिए घृणा, वैमनस्य और तनाव फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। राजधानी रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी ऑटोमोटर्स वर्कशॉप में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़े 6 वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
4: वाह वाह वाह।
3: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ। और आप जवाबदेह है, उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
4: जी।
3: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
4: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे?
3: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
4: जी।
3: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है।
4: हाँ, 1+1
3: का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा 1-1 एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
4: जी।
3: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट। और पैंट और एक शर्ट, ऐसे 2 ही पेयर थे मेरे पास
4: जी।
3: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा। और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है।
4: वाह,
3: तुम मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी, ये सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के, लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहाँ पर मुझे 3 साल रहना है
4: जी।
3: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्र संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
4: हाँ।
3: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रख,

0: और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है, सारे उनका स्वागत आगत, तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी, तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में, तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा, मैडम आप यहां क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है। और उनका नाम था अनामिका अक्सर।
1: हो, घोड़े को जलेबी खिलाना हो जिन्होंने आगे
0: तो
1: चल के फिल्म
0: मेरी
1: बनाई।
0: क्लासमेट जो पीएन हक्सर, जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं, स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहाँ से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं, ठीक है, ये जो पहला शौक था, उस शौक से, उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं, यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग?
0: नहीं, वो नहीं बता, उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी,
1: अच्छा ठीक
0: और ये
1: है।
0: मुंबई में ही रहती है।
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है, ठीक।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।

0: निकालने के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
1: जी जी,
0: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
1: अरे कसम,
0: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
1: जी,
0: तो इसीलिए मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई आमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं, नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
1: वाह वाह वाह,
0: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
1: क्या बात,
0: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे, उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
1: जी,
0: और कारंजी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
1: वाह
0: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड के ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहां आना हुआ, और सौभाग्य से कारंजी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहां आए तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे, पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे, तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो

0: रेपर्ट्री कंपनी का नाटक देख रहे हैं, जसमावडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सबका एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारंजी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर अच्छा। ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्ट्री कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्ट्री क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो, तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं,
1: ये बहुत अद्भुत बात है,
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख के चल।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चल।

से डरता है क्यों? ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं।

0: रहता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहां आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहां, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है, नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, एक प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। नीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
0: जी।
1: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
0: जी,
1: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही, कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था, कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंज वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
0: जी,
1: या गजब तिची अदा मराठी में
0: जी,
1: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
0: जी,
1: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
0: वाह वाह, क्या बात।
1: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, तीन मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
0: ये बात
1: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां दो फ्लड लगी हुई है,
0: उसी में करना है,
1: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के, वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें तीन अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने दो या तीन फ्लड लाइट बनवा दिए।
0: गजब।
1: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
0: अच्छा।
1: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने तीन ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो दो ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
0: अरे बाप रे,
1: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
0: एक्स्ट्रा थे,
1: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातना घर हिंदी में की,
0: बहुत इंटेंस नाटक
1: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
0: ओके, ये वो पॉइंट,
1: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्थ नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्थ के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक्थ को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्थ, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
0: क्या बात,
1: हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
0: वाह।
1: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह, उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे है ये डायरेक्टर, और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
0: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव।
1: और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली ले लेगा आई शुड बी द डायरेक्टर।
0: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
1: चेंज की। मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
0: यस।
1: और मैं

0: आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा
1: जी। यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था, और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में, नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है, और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब 2 अलग अलग रास्ते।
1: अलग, दोनों भी, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी,
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था, और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे, और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे रिसर्च के लिए, और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब,
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
1: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी का या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा बावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बाप रे,
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं।
0: गजब,
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में, तो ये एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
0: जी,
1: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगियर आप देख रहे हो,
0: हाँ,
1: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है, तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
0: जी,
1: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है,
0: हाँ,
1: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम,
0: अच्छा,
1: दैवम मतलब देव
0: जी,
1: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
0: जी जी जी,
1: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम, तैयम का मतलब है देव,
0: देव
1: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
0: क्या अनुभूति है, वाह,
1: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
0: कि कौन है,
1: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है, उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है, उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
0: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
1: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती,
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर
1: जी
0: उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती है, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: बत्तीस
1: रे।
0: बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां,
1: वाह,
0: जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं, वो भगवान को देखने आए हैं,
1: आस्था है
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है,
1: जी।
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी।
0: अंदर, कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि
1: जी
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये चार राज्यों ने, मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है, तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व थिंग।
1: जी
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया, या नाच में किया, सब हो गया, उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं, हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: ये है विविध समाचार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि रांची में छात्रों का 26-27 दिनों से जारी आंदोलन सफल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में आए निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। श्री महतो ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य के सपने देखने वाले युवा व्यवस्था से परेशान होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोजकों को अनुमंडल पदाधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम की तारीख, समय, मार्ग और संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के अंतिम चरण में अंतिम सोमवारी और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह के सामूहिक प्रयास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण कराया गया है। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

0: नया संकल्प नई पहल के इस कार्यक्रम में आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जोहर, कैसे हैं श्रोताओं? सब ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए बारिश का मौसम है ना, और सावन का महीना भी है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। इस मौसम का अपना एक अलग ही आनंद होता है, कभी रिमझिम बारिश की फुहार पड़ती है तो कभी हल्की हल्की धूप को देखकर हम खुश भी होते हैं, है ना? आज थोड़ी राहत मिली ऐसा सोचने लगते हैं। श्रोताओं, ऐसे में हम करते क्या हैं, झटपट अपने काम काज में लग जाते हैं, लगता है जल्दी जल्दी कुछ घरेलू कार्य भी हैं तो उसे निपटा लें। पर जो रोज बारिश में बाहर जाते हैं, कभी कभी भीग भी जाते हैं, भीगने का भी एक अलग आनंद है, बस तबीयत खराब ना हो इसका हमें ध्यान रखना होता है। हल्की बारिश में हम भीगते हैं तब तो बच सकते हैं, पर जानबूझकर यदि हम भीगते हैं तो फिर परेशानी भी हमें ही झेलनी पड़ती है। इसलिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए हमारे साथ अपने मनपसंद कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल में। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, उसके पहले एक जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, गीत के बाद हम थोड़ी जानकारी की बातें करते हैं आपसे। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों का समान अवसर प्रदान करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है, जैसे शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, आईसीडीएस सेवाएं, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण व टीकाकरण की समान उपलब्धता, सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पहुंचाना है। उर्दू शिक्षण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती और संसाधनों के लिए सहायता पहुंचाना है। मदरसा आधुनिकीकरण, मदरसों में बुनियादी शैक्षणिक और आधारभूत संरचना का विकास, मेघावी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाएं, आर्थिक विकास और रोजगार के बारे में हम बता दें, आर्थिक सहायता, स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराना है, कौशल विकास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और अन्य पहलों के माध्यम से युवाओं का कौशल बढ़ाना है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करना है, आवास योजना जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास योजनाओं के तहत लक्षित लाभ पहुंचाना है, सांप्रदायिक तनाव को रोकने और हिंसा से निपटने के लिए कठोर और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई, विशेष अदालतें, सांप्रदायिक अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया। इसी जानकारी के साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। विषय है स्वच्छ भारत मिशन। भेंटवार्ताकार हैं राम कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा।
1: सफलता के लिए बहुत सी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ना होगा, विभिन्न समुदायों की भागीदारी बढ़ानी होगी और सरकार को हर स्तर पर गंभीर प्रयास करने होंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, जन सुविधाएं स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का समय है। तभी हम खुले में शौच करने की शर्मिंदगी से मुक्त होकर भारत को सही अर्थ में स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के राम कुमार जी, जो कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक हैं। तो राम कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सर, आपसे

0: सभी ग्रामीण परिवेश को सदा के लिए खुले में शौच मुक्त करने का अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाया जा रहा है।
1: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये कब लागू किया गया और इसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं आप?
0: ऐसी योजना हमारी विभिन्न नामों से 1996 से चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत की गई एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ, जिसका मूल उद्देश्य था सिर्फ शौचालय निर्माण न करके ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त करना, जिससे ग्रामीणों की ग्रामीण परिवेश को एक स्वच्छ एनवायरमेंट दिया जा सके और उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार प्राप्त किया जा सके।
1: इसमें कैसे लाभुकों को शामिल करते हैं और कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसका क्या तरीका है?
0: इसके तहत 12,000 की प्रोत्साहन राशि ऐसे लाभुक जो जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसे हम सीमांत किसान और लघु किसान कहते हैं, जिनके पास भूमिहर जो मजदूर हैं, दूसरे से जगह से वासित हैं उस गांव में, सभी वो SC ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं और विधवा परिवार जो वुमेन हेडेड फैमिली है
1: जी।
0: ये सभी लोग इस लाभुक की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए वर्ष 2012 में एक बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसमें ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और वो शौचालय बनाने में असमर्थ है। इस बेसलाइन 2012 के अनुसार ही ऐसे लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है
1: जी। खुले में मल त्याग खासकर महिलाओं का अपमान है और उनके स्वाभिमान पर खुली आघात है। इससे पता चलता है कि साफ सफाई केवल स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं, बल्कि यह जीवन जीविकोपार्जन और इन सबसे ऊपर मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करता है। तो आप बताएं कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन कैसे करते हैं और लाभुक को लाभ कैसे पहुंचता है
0: जी? इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रखंडों को, पंचायतों को चयन करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा ये चयन होके आता है, जो मुखिया काफी एक्टिव होते हैं, जहां के ग्रामीण काफी एक्टिव होते हैं, उनको प्रायोरिटी में चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 15-16 में इस जिले के सभी 16 प्रखंड पंचायतों का चयन इस हेतु किया गया था, ODF हेतु लक्षित किया गया था। इसी दौरान हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा और ग्रामीणों के सकारात्मक पहल के कारण चमकता चुरचू अभियान चुरचू प्रखंड को ODF करने का कार्यक्रम चलाया गया। विगत 2 माह से निरंतर प्रयास करके लगभग शौचालय निर्माण का कार्य सभी चिन्हित लाभुकों के लिए चमकता चुरचू अभियान के तहत चुरचू में करा लिया गया है। इसके कार्यान्वयन की पद्धति यही है कि हम लोग पहले जो चिन्हित लाभुक हैं उनके अनुसार ग्राम जल स्वच्छता समिति को 12,000 की राशि उपलब्ध करा देते हैं और उस 12,000 राशि को उपलब्ध कराने के बाद ग्राम सभा के द्वारा बैठक की जाती है कि ऐसे लाभुक जो अपना शौचालय स्वयं बनाना चाहते हैं, बनाने को इच्छुक हैं, जो चिन्हित परिवार में आते हैं, जो बेसलाइन सर्वे में जिनका नाम है, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना शौचालय बनवा लो और जो पहले शौचालय बनाएगा उससे पहले उसकी राशि उपलब्ध होगी। तो पहले आओ पहले पाओ का ये एक रेस टाइप का, एक कंपटीशन टाइप का लोगों में किया जाता है, ताकि एक देखा सीखे लोग सीख सकें और अपना अपना शौचालय बना सकें। जहां तक देखा गया शौचालय की मांग बहुत देखी जाती है, हर कोई चाहता है कि मेरा शौचालय बने, लेकिन शौचालय के उपयोग की बात आती है तो लोगों में थोड़ा सा आनाकानी की भावना आ जाती है। तो शौचालय निर्माण में एक पद्धति यह है कि हम ग्रामीणों को, ग्राम जल स्वच्छता समिति को राशि उपलब्ध कराते हैं, वहां से जब सभी लोग शौचालय अपना बना लेते हैं, सरकारी प्रक्रिया के तहत जांच हो जाती है, मुखिया सत्यापित करते हैं कि भाई शौचालय इनका बन गया और इसकी लागत कम से कम 12,000 है, हमारे कनीय अभियंता भी इसका 100% सत्यापन करते हैं, उसका फोटोग्राफ होने के बाद 12,000 की राशि कोई समारोह आयोजित करके माननीय चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लाभुकों को उपलब्ध करा दी जाती है।
1: तो क्या वे अपने जमीन में करते हैं या तो?
0: नहीं, शौचालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पे की जानी चाहिए और वही हम लोग प्रमोट भी करते हैं। अगर वो दूसरे की जमीन पे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो उसे अक्वायर कर लेगा तो दिक्कत होगी उनके लिए, तो बेहतर यही होता है कि अपने जमीन पे ही लोग बनाएं। और अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है कि लोग अपनी जमीन का ही उपयोग अपना शौचालय बनाने के लिए करते हैं।
1: खुले में शौच करने से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है और इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा?
0: एक बार शौचालय बनने के बाद लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि भाई ये शौचालय क्यों बनाया गया, उनको ये बात समझाने की जरूरत पड़ती है। कई बैठकें आयोजित की जाती है, बैठकों में हम चर्चा करते हैं कि अगर आप खुले में शौच को जाते हैं तो इस खुले में शौच जाने की वजह से जो हमारी जो बच्चियां हैं उनका हाइट हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरता चला जा रहा है
1: जी।
0: तो अभी एक किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, WHO का सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि लड़कियों का कद कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये खुले में शौच जाना। इसमें जो कृमि है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे खाने तक, हमारे मल जो है मुख तक आता है, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। दूसरी बात, बरसात

0: के दिनों में अगर हम देखते हैं तो खुले में शौच जाने से जो शौच का जगह होता है वहां से जो गंदगी है वो शौच किसी न किसी रूप में हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है
1: जी।
0: और उससे बुरी तरह से दूषित करता है, प्रभावित करता है। अब उस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इस तरह से हम न सिर्फ बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चर्चा लोगों में की जाती है तो उनको एक सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है कि आपके इस गलत बिहेवियर के चलते, गलत आदतों के चलते ये असर पड़ रहा है, आपके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक शौचालय जो बनाया गया है जिसका नियमित इस्तेमाल करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है और मल से मुक्त तक का एक बैरियर को क्रिएट करने का कार्य इस शौचालय के द्वारा किया जाता है जिससे मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके।
1: शौचालय बनाने के बाद रख रखाव में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि स्वच्छता जहां होगा वहां रोग या बीमारी का प्रभाव वहां पे कम पड़ेगा।
0: देखिए, शौचालय अगर मेरा है तो उसका रख रखाव करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम अपना घर बनाते हैं, हम आंगन बनाते हैं तो हम देखते हैं हर पर्व त्योहार में डेली उठ के उसमें झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं। तो अगर हम उसका नियमित उपयोग करेंगे तो उसको साफ करने की भावना हमें जगेगी। लेकिन अगर बना के उसे छोड़ देंगे तो अन्यत्र कार्यों के लिए वो उपयोग किया जाएगा और वो कुछ दिनों के बाद डिफंक्ट शौचालयों की सूची में आ जाएगा। इससे सरकारी राशि का न सिर्फ दुरुपयोग होगा बल्कि एक जो उनको सुविधा दी गई थी उस सुविधा से वो फिर दोबारा वंचित हो जाएंगे और उनका घर फिर से बीमारियों से पीड़ित रहेगा और वो बाकी चीजों के लिए भी परेशान ही रहेंगे।
1: और हमारे ग्रामीण समाज में छोटे परिवार बड़े परिवार दोनों ही रहते हैं और खासकर देखा जाता है कि अगर शौचालय बन गया, मेरा तैयार हो गया, जहां आत्मसम्मान की बात आती है तो वहां क्या करते हैं कि दो या तीन परिवार तो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए ताकि वे अपने शौचालय का उपयोग करेंगे और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को वे मतलब इस गंदगी से दूर रखेंगे।
0: देखिए, खुले में शौच मुक्त की मूल भावना यही है कि उस ग्रामीण परिवेश में जितने लोग रहते हैं सभी शौचालय का नियमित उपयोग करें
1: जी।
0: कोई भी एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए ना जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या जवान हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो। तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा गांव, पूरा हमारा समाज, पूरा प्रखंड खुले में शौच मुक्त हो गया। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को इस शौचालय की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है क्योंकि अगर उन्हें शौच आता है तो या तो वह रात होने का इंतजार, अंधेरा होने का इंतजार करती है या सुबह सूर्य उगने से पहले जाती है। अगर बीच दौरान में कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई तो उनके लिए बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है कि भाई वो शौच के लिए कैसे जाएं। ऐसे में उनको पेट दर्द और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं एक ऐसे साधन है, अगर महिलाओं को हम तरीके से सेंसिटाइज कर लें तो वो एक इसे आंदोलन का रूप दे सकती हैं। और जो हमारे लोकल महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं, जल सहिया होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जिसमें सेविका सहायिका होती है, इन सबके ग्रुप के द्वारा महिलाओं को, व्यक्तियों को, बच्चियों को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाते हुए शौचालयों का नियमित उपयोग करें जिससे कि किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें भविष्य में न करना पड़े। क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें रात में सांप का डर है, बरसात में गिरने का डर है, और अगर छेड़खानी वगैरह हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है
1: और गांव में जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारे जल स्रोत हैं,
0: और सबसे बड़ी बात दूषित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके और हर व्यक्ति खुले में शौच जाना हमेशा के लिए बंद कर दे।
1: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में आप कैसे कैसे प्रतिनिधियों को आप सचेत किए हैं या तो इससे जोड़ के रखे हैं ताकि ये जो कार्य है आपका सफल हो और हमारा समाज, हमारा गांव इस जो खुले में शौच से मुक्त हो।
0: इस कार्यक्रम को गांवों तक ले जाने के लिए, वहां के ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक बहुत सशक्त संस्था है, वो ग्राम जल स्वच्छता समिति है। ये संस्था अन्य संस्थाओं जैसे VHND की संस्था है, आपके विद्यालय की समिति, विद्यालय समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति है
1: जी।
0: इसके अलावा आंगनवाड़ी की जो समिति है, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित कर बैठकों को, नियमित बैठकों को आयोजित करते हैं क्योंकि, और इसके बारे में इसकी सभी जानकारी लोगों को देते हैं, उन्हें सेंसिटाइज करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप खुले में शौच ना जाएं। अगर खुले में शौच जाते हैं तो इतनी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और एक व्यवस्था, एक सुविधा जो सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है उसका नियमित उपयोग करें तो आपके जीवन स्तर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके आर्थिक स्थिति में काफी अपेक्षित सुधार पाया जा सकता है,
1: बदलाव हो सकता है।
0: हमारे यहाँ से ये इस वित्तीय वर्ष के पूर्व तक, मतलब ये अभी हम लोग 16-17 में आ गए, 15-16 तक जितने हमारे विद्यालय थे उनको शौचालयों से आच्छादित किया जाना था। उसके बाद कुछ कॉरपोरेट के सहयोग से, जैसे हमारे NTPC है, CCL है, और कुछ हम लोगों के द्वारा, इस विभाग के द्वारा, जिला जल स्वच्छता मिशन प्रकल्प के द्वारा, ऐसे सभी विद्यालय जो शौचालय की सुविधा से विहीन थे उन सबों

0: को शौचालय के निर्माण से आच्छादित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें भी शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। कुछ 80 या 81 शौचालयों की सूची अभी प्राप्त हुई है जो सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है
1: जी।
0: उसके बाद अभी हमारे स्कीम में जो इस वित्तीय वर्ष से किसी भी संस्थागत शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाना है क्योंकि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे उसे प्राप्त किया जा चुका है। और अगर हम वैसा करते हैं तो हम एक ही योजना का दोहरीकरण करते हैं बार बार जिससे पैसा का अनावश्यक दुरुपयोग होगा अनावश्यक उसका व्यय होगा।
1: ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का निर्धारित लक्ष्य क्या है
0: जी? हमारा जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का 18,108 शौचालय बनाए जाने थे
1: जी।
0: इसके विरुद्ध हम लोगों ने 20,373 शौचालयों का निर्माण
1: हो चुका है
0: जी किया है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे हजारीबाग जिले को ODF खुले में शौच मुक्त के लिए लक्षित किया गया है और हम लोगों का प्रयास होगा। हम सभी माननीय हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं हमारे जितने भी माननीय विधायकगण सांसदगण हैं हमारे जितने भी नेचुरल लीडर्स हैं धार्मिक लीडर्स हैं सबसे हम अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें ग्रामीणों से चर्चा करें और ये प्रयास करें कि भाई वो अपना शौचालय बनाएं और ये प्रोत्साहन की राशि सीधे अपने खाते में पाएं जिससे कि शौचालय का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त हो सके और इससे न सिर्फ वो बल्कि अपने समाज को भी लाभान्वित कर सके।
1: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा समाज हमारा गांव खुले में शौच से मुक्त हो इसके लिए आप अंत में क्या कहना चाहेंगे ताकि वे जागरूक हों और अपने इस कार्यक्रम से जुड़े और लाभ ले सकें?
0: खुले में शौच जाना एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और इस प्रथा को अगर हम डंडा घुमा के या छड़ी घुमा के चाह रहे कि हम लोगों के एक आदत को एक व्यवहार को जो काफी जमाने से चली आ रही है बदल दें ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हर आदमी का पार्टिसिपेशन उसमें 100% होना शुरू हो जाए
1: जी।
0: तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्कूल इज अ गेटवे टू सैनिटेशन। बच्चों को महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें सेंसिटाइज करके प्रेरित करके अगर हम आगे बढ़ें हमारे जितने भी नए चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं जो काफी सकारात्मक रूप से इस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं और लोगों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनका ये इंथुजियाज्म उनका ये ग्रामीणों के प्रति जवाबदेही जो दिखती है अगर इसी तरह से सकारात्मक रूप से नियमित वो बैठ के करें और लोगों के बीच इस चीज को प्रचारित करें कि भाई हर चीज हमारे पास है फिर हम शौचालय के लिए सरकारी राशि का ही मुंह क्यों ताकते रहे हम बना लें इसको इससे सुविधा तो हमें मिलनी है सरकार को तो कोई सुविधा मिलनी नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी हमारा अनावश्यक व्यय कम हो जाएगा हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं अच्छे खाना खा सकते हैं। तो हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना उचित नहीं है लेकिन सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसका सही तरीके से समुचित उपयोग तभी होगा जब हर व्यक्ति ओनरशिप लेगा कि भाई ये हमारी चीज है ये जो बन रहा है ये हम अपना बना रहे हैं इस उद्देश्य से बना रहे हैं और ऐसा बनाने के बाद हम कई कुप्रथाओं से निजात पा सकते हैं कई दुर्घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं और कुल मिला के स्वच्छ भारत मिशन के जो मूल भावना है खुले में शौच मुक्त करना खुले में शौच मुक्त हजारीबाग खुले में शौच मुक्त झारखंड और खुले में शौच मुक्त भारत की जो अवधारणा को हम लोग पूरा कर सकते हैं।
1: हम लोगों को यही मानना होगा कि स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यही सही समय और अवसर है। जब स्वच्छता संबंधी बातें आदतों में शामिल हो जाएगी तो बदलाव भी खुद ब खुद दिखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी अनेक जानकारी दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था स्वच्छ भारत मिशन। भेंटवार्ताकार थे राम कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। तो इसी के साथ नया संकल्प नई पहल के इस कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा तरंग।

युवा तरंग कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम दोस्तों को रानी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सब ठीक से पढ़ रहे होंगे, है ना? चलिए, पढ़ाई के साथ साथ बहुत से युवा वर्ग जो हैं अपने काम काज में भी लगे हुए होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, हर एक कार्य को अनुशासन में रह कर करना चाहिए हमें, तभी हम सफल हो सकते हैं। और सफलता पाने के लिए हमें सकारात्मक सोच भी रखना होता है। सकारात्मक सोच के साथ भी आगे बढ़िए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए अपने मनपसंद कार्यक्रम युवा तरंग भी। हम आपको सुनवाते खूबसूरत सा ये गाना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से हम करते हैं युवा तरंग कार्यक्रम में आप तमाम दोस्तों का स्वागत। थोड़ी चर्चा करते हैं अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम इस विषय पे। भारत ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद की, जब 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। यह दिन भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत, वैज्ञानिक उपलब्धियों और युवाओं के विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का प्रतीक है। शुरुआत की हम बात करें तो 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था। पहला उपग्रह, इसके बारे में जानते हैं। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह का आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था। मंगलयान चंद्रयान 1-2 और चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन। ऐतिहासिक तिथि 23 अगस्त 2023 को भारत चांद के दक्षिणी ध्रुवीय हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 अगस्त 2023 को इसको मुख्यालय बेंगलुरु में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रथम उत्सव भारत ने 23 अगस्त 2024 को मनाया, अपना पहला आधिकारिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। तो इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

0: इस गीत के बाद लीजिए सुनिए, भेंटवार्ता क्या है, मानव अधिकारों का इतिहास और क्या है मौलिक अधिकार। भेंटवार्ताकार हैं, भेंट करता है विश्वनाथ सोनी, भेंटवार्ताकार हैं अधिवक्ता हिमांशु कुमार।
1: का काफी लंबा इतिहास रहा है और इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सिविल कोर्ट हजारीबाग के अधिवक्ता हिमांशु कुमार सिन्हा जी। तो इनका हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि मानव अधिकारों का इतिहास क्या है और इन दोनों मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच क्या अंतर है। तो इन सब चीजों पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए इनके पास मौजूद है। तो सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिमांशु जी।
2: धन्यवाद।
1: तो जैसा कि मानव अधिकारों का काफी इतिहास रहा है, काफी लंबा इतिहास रहा है, मानव के जीवन के लिए, मानव की समृद्धि के लिए मानव अधिकारों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव अधिकारों का इतिहास क्या है, कब से मानव अधिकारों के इतिहास के बारे में सोचा जाने लगा है और उसके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में मैं श्रोताओं को बताऊं।
2: मानव अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन जनरल असेंबली के सर्वप्रथम वर्ष 1948 में ग्रहण किया है और उसी घोषणा के प्रथम बार सभी मानव को अपना मानव सम्मान चाहे वह सामाजिक आर्थिक हो अधिकार प्राप्त हुआ, जिसका पूर्ण विवरण इंटरनेशनल बैगना कार्टा में बताया गया है। इस घोषणा में 30 आर्टिकल हैं जिसको चार भाग में बांटा गया है और पहले राइट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल है इसके, सब बताया गया है और जहाँ तक इसका कब से लागू हुआ इसके विषय में मैं आपको बता दूँ।
1: तो हिमांशु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानव अधिकारों का जरूरत कैसे आन पड़ा, किस चीजों को देखते हुए मानव अधिकारों की जरूरत पड़ी, इसके बारे में हमें श्रोताओं को बताएं।
2: जब व्यक्तियों के बीच भेदभाव होने लगे, अन्याय होने लगे, ये सब समझ के जो है मानवाधिकार की जरूरत पड़ी। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, जैसे चाइना में एक मुसलमान वर्ग है, उनके साथ अन्याय हो रहा हुआ तो वो एक कारण, किसी गरीब को सताने के कारण, किसी अबला को जो है सो क्षति पहुंचाने के कारण, इस तरह से जब भेदभाव समाज में जब होने लगे, किसी का हनन हो जाए, किसी का राइट का जिसको कहते हैं आप उसको अधिकार है, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार, तो इसलिए ये जो है सब मानव अधिकार की जरूरत पड़ी।
1: तो मानव अधिकार का इतिहास की अगर हम लोग बातचीत करें, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, तो मानव अधिकार कब से देखने को मिलता है?
2: ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के आधिकारिक मान्यता दी गई 1948 को, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, अतः प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
1: तो जैसा कि मानवाधिकार के इतिहास के बारे में बात करें तो 1948 से ये चला आ रहा है
2: जी।
1: तो इसमें किन किन अधिकारों को प्रदान किया जाता है लोगों को?
2: समाज में अगर कुछ गलत हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा, जो उसका अधिकार इसे जीने का अधिकार, इसको आप मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, जो कि हमारा जो है सो संविधान जो है भारतीय संविधान में 7 अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार 7 हैं, लेकिन ये वो कटल कर दिया गया 44वां जो संशोधन हुआ विधेयक में, उसके तहत एक वो संपत्ति का अधिकार को हटा कर वो जो है सो संविधान में 3000A में लाया गया है, जो वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करते। और मानवाधिकार तो मौलिक अधिकार से बड़ी चीज है, क्योंकि हर मानव के लिए जो है ना ये मानवाधिकार है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो भारतीय हो, विदेश के हो, कहीं के भी, किसी भी कंट्री के हो, मानवाधिकार उनके साथ लागू है। उसमें नस्ल का भेदभाव नहीं करे कोई, है ना, कोई गोरा है, कोई अधिकाला है, इस तरह का भेदभाव नहीं, कोई नीच जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो, उनके साथ असमानता नहीं हो, इसलिए इसकी जरूरत आन पड़ी।
1: बिल्कुल। तो अब हम जानकारी लेना चाहेंगे कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों में अंतर है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इससे पहले हम जानकारी हासिल करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौलिक अधिकार भारत में लोगों को क्या क्या रूप में दिए?
2: मौलिक अधिकार संविधान में 7 जो है सो दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति

0: का भी अधिकार है, लेकिन उसको 44वें में जैसा हमने पहले भी कहा है उसको हटाया गया है संशोधन के द्वारा, और उसको जो है सो 301 क्लॉज में लाया गया है जिसमें कि हम अगर इमरजेंसी पेड वगैरह नहीं है तो उसमें हम उसको लागू कर सकते। और जहां तक और अधिकार की बात है तो उसमें है समता का अधिकार है, उसके बाद जो है सो अभिव्यक्ति का अधिकार है, जैसे हम कहीं पर भी चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। समता का अधिकार हुआ कि जो है सो सब भी जितने भी मनुष्य हैं लोग हैं उस सब में समानता है, कहीं हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसमें कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति उसमें हमको दबाव नहीं दे सकती कि जो है सो आप हिंदू धर्म क्यों अपनाए हैं, आप जो है सो इस्लाम क्यों नहीं अपनाते हैं, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं, जो हर व्यक्ति अपने मर्जी से कर सकता है,
1: अपने मर्जी से धर्म, हाँ,
0: धर्म अपना जो है अपना सकता है, इसके लिए कहीं रोक ठोक नहीं है, ये वो धर्म। फिर सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, किसी को भी आप किसी कोई चीज भी पढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं, ये आपका हुआ शिक्षा का अधिकार हो गया। फिर संवैधानिक विचारों का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 32 से 35 में दर्शाया गया है संविधान का
1: विचार,
0: हाँ इस तरह से छह अधिकार ये हुए, सातवा को कटल करके उसको लाया गया है, ये सात तरह के मौलिक अधिकार। मानव अधिकार की परिभाषा बहुत बड़ी, हर मानव जाति जो जन्म लिया उसी समय से उसका मानवाधिकार आयोग रहने का खाने का है ना, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं बोले, कोई उसको सताए नहीं, ये अधिकार तो उसको जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है,
1: चाहे वो किसी भी देश का हो,
0: किसी भी देश का नागरिक हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये जो है सो यूएनओ के द्वारा नहलाया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, फिर हम लोग इसको जो है सो लाए हमने इसको ब्रांड।
1: अगर जैसे कि मान के चलिए अगर इन अधिकारों का किसी तरह से हनन किया जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए?
0: हाँ, इसका हमारे देश में जो है सो इसके जो है सो सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 7 मेंबर होते हैं, तो आप जो है सो वहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं। और हर अथी में कुछ अथी किया गया है, हर स्टेट में भी इसका जो है सो ऑफिस है, अब तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसका ऑफिस है, तो आप स्टेट में भी जो है स्टेट के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो होते हैं जस्टिस, वो अध्यक्ष होते हैं और बाकी 7 मेंबर होते हैं, तो आप उनके पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1: कोई गरीब आदमी हो, कोई अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, तो वो अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकता है?
0: कोई गरीब आदमी है तो वो जो है सो दूसरे के मार्फत से भी या एक पन्ना कागज जो है तो लिखवा कर वो भेज सकता है। इसमें मानवाधिकार आयोग में जाने के लिए बहुत चीज का जरूरत नहीं, जैसे अभी तो आ गया है आपका मोबाइल वगैरह से, आप इससे भी जो है सो वहाँ का नंबर दे करके वहाँ मैसेज दे सकते हैं, और उस पर जो संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग वो अपना जांच शुरू करवाती है अपने एजेंसी से।
1: अगर कोई मानवाधिकार का हनन करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है?
0: उस अपने डायरेक्ट मानवाधिकार आयोग जो है सजा नहीं दे सकती है, उसके लिए आपको न्यायालय जाना होगा, लेकिन वो अनुशंसा करके जो है सो सक्षम अधिकारी के पास भेज देते हैं, उनका काम है फिर उसको अनुपालन करना।
1: अच्छा,
0: कर रहे हैं।
1: तो जैसा कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों की हम चर्चा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार जहां अधिकार मिलता है वहां जिम्मेवारी भी लोगों को निभाना पड़ता है, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है राज्य के प्रति, स्टेट के प्रति हमारी भी क्या जिम्मेदारी बनती है एज ए नागरिक?
0: एज ए नागरिक हमको जो है सो अधिकार साथ साथ कर्तव्य भी है, अगर खाली अधिकार रहेगा और कर्तव्य अगर हम भूल जाएंगे तो अधिकार नहीं रहा, तो हमको जो है सो हमारी जिम्मेवारी यही है कि अगर हम जागरूक नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, या मान लीजिए कोई पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर उनके सामने इस तरह का कोई मामला जैसे कि कोई किसी को सता रहा हो, बाल शोषण कर रहा हो, कम उम्र में अगर कोई बच्ची की शादी हो रही हो, उसके साथ जबरन किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना जो है सो हमारा बीइंग ए नागरिक हमारा कर्तव्य है कि इसकी जानकारी हम जो है सो मानवाधिकार आयोग या सक्षम जिला प्रशासन को हम दें, सो डेट की जो है सो आगे जो है इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो सके, डाइन बिसाही है ये भी

0: कानून अपराध है, आप किसी को जो है सो प्रताड़ित कर रहे हैं कि डाइन है, ये तो सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है।
1: तो हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफी जानकारी हासिल करेंगे, और जिस तरह से हमें राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, मानवाधिकार प्राप्त है, अपनी जिम्मेवारी को भी बखूबी समझने की आवश्यकता है, और उसी हिसाब से हमारा आचरण भी हमारे राज्य के प्रति होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा देश और राज्य सशक्त हो सकता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप लोग एक जागरूक नागरिक बने, और इस तरह का कोई कृत्य अगर कहीं आप देखते हैं या सुनते हैं तो उसकी जानकारी जो है सो सक्षम एरिया में या जिला में ये जो सक्षम अधिकारी हैं उनको आप जरूर सूचित करें।
2: आप सुन रहे थे क्या है मानव अधिकारों का इतिहास और क्या है मौलिक अधिकार। भेंट करता थे विश्वनाथ सोनी और भेंट वार्ताकार थे अधिवक्ता हिमांशु कुमार। तो इसी के साथ युवा तरंग कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा ने राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और सरकार से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं मिला। हजारीबाग के बरही में आज पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकालकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पुलिस ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और नशीले पदार्थों की बिक्री तथा सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पलामू जिले के पांकी थाना पुलिस ने ऑपरेशन सफाया के तहत व्यापारी से हथियार के बल पर लूट की तैयारी कर रहे तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध देशी कार्बाइन, मैगजीन, 7 जिंदा गोलियां, एक खोखा, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के अंतिम चरण में अंतिम सोमवारी और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा मध्यवर्ती जिले खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम मेहनत कश।

नमस्कार, मेहनत करने वाले हाथों को सलाम, सीखने की चाह रखने वाले युवाओं को सलाम, और अपने हुनर के दम पर अपना भविष्य संवारने का सपना देखने वाले हर नौजवान को हमारा सलाम। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मेहनतकश, और मैं हूं आपकी दोस्त माधवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का क्या महत्व है, इस बारे में। आज का युवा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और अपने परिवार तथा समाज के विकास में योगदान देना चाहता है, लेकिन केवल डिग्री होना ही हमेशा पर्याप्त नहीं होता। आज के बदलते दौर में ज्ञान के साथ साथ कौशल यानी स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है, हुनर वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दोस्तों, कौशल प्रशिक्षण का सीधा अर्थ किसी काम को सही तरीके से करने की व्यावहारिक जानकारी और दक्षता हासिल करना है। जैसे कोई युवा इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का, कोई कंप्यूटर, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई मोटर मैकेनिक, कोई वेल्डिंग, कोई खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीक और कोई डिजिटल क्षेत्र का कौशल सीखता है। यानी कौशल प्रशिक्षण हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि यह भी सिखाता है कि काम को कैसे करके दिखाना है, और यही बात रोजगार की दुनिया में बहुत मायने रखती है। आज तकनीक तेजी से बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, उद्योगों और बाजार की जरूरतें बदल रही हैं। ऐसे समय में जो युवा नई चीज सीखने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अवसरों की कमी नहीं है। कौशल प्रशिक्षण से युवा रोजगार के लिए आवश्यक व्यावहारिक दक्षता हासिल कर सकता है, अपनी रोजगार योग्यता को बढ़ा सकता है, स्वरोजगार शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सकता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित कर सकता है, बदलती तकनीक और काम की नई जरूरतों के साथ खुद को ढाल सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कौशल सीखना केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी है। दोस्तों, शिक्षा और कौशल एक दूसरे के पूरक हैं। मान लीजिए कृषि की पढ़ाई करने वाला युवा आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, कृषि उद्यमिता या कृषि उत्पादों के विपणन का कौशल सीख सकता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ हुनर भविष्य को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, कौशल का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आज युवा अपनी रुचि, क्षमता और स्थानीय जरूरत के अनुसार अलग अलग कौशल चुन सकते हैं। दोस्तों, मुझे किस काम में रुचि है, मैं किस काम को सीख सकता हूँ, मेरे क्षेत्र में किस कौशल की मांग है, इन तीन सवालों के जवाब आपको सही दिशा चुनने में मदद कर सकते हैं। आप सभी इस बारे में विचार करते हुए आनंद उठाइए इस गीत का।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: इज द पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर से सावधान।

0: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आइए सुनते हैं विक्रम राणा से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगे फर्नीचर के कार्य क्षेत्र में भी रोजगार का अच्छा जरिया है। इस बारे में इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार दास।
4: श्रोताओं, रोजगार के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसे करके अपनी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो श्रोताओ, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक युवा हैं जो कि बहुत ही मेहनतशील युवा हैं और ये फर्नीचर का काम करते हैं और फर्नीचर का काम करके अपनी बेरोजगारी को दूर किए हैं, और जिनका नाम है विक्रम राणा, जो कि पसई हजारीबाग के रहने वाले हैं। और आज इनसे जानेंगे कि कैसे फर्नीचर का काम करते हैं और किस तरह से फर्नीचर का काम करके अपनी बेरोजगारी को दूर किए हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारे हैं। तो विक्रम जी, सबसे पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
5: जी नमस्कार।
6: लगभग जिस काम से आप जुड़े हुए हैं, लगभग कितने सालों से इस काम से जुड़े हुए, कितने साल से इस काम को कर रहे हैं?
5: मैं अभी इस काम को लगभग 10 वर्षों से कर रहा हूँ।
6: 10 वर्षों से?
5: जी
6: जी, बहुत अच्छा है कि आप 10 वर्षों से इस काम से जुड़े हुए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फर्नीचर पेंट का काम कर रहे हैं, तो फर्नीचर पेंट करने का काम आपके मन में कब आया, क्यों आया, आप क्यों इस काम से जुड़े, आपके साथ क्या परिस्थिति आई कि इस काम से जुड़े और क्या समस्याएं हुई?
5: जी, मैं इस काम से काफी समय से, लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हूँ, और मैं पहले जो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया था उसके बाद मैं बेरोजगार था और काफी समय से ही मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। बहुत जगह मैंने फॉर्म अप्लाई किया और कोशिश किया नौकरी के लिए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं बहुत ही परेशान हो गया और मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मुझे, मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, मैं बेरोजगार हो गया था, बहुत ही परेशान था। मैं सोच रहा था कि किसी बहुत तरह के दोस्त मिले जो गलत लाइन में मुझे खींचने की कोशिश, लेकिन मैं नहीं गया उधर, और मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना चाहिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए।
6: बिल्कुल।
5: तो मैंने खुद का काम सोचा कि मैं खुद का कोई काम करूं।
6: जी।
5: फिर मेरे ही एक दोस्त जो फर्नीचर का काम करते हैं,
6: जी जी,
5: उन्होंने मुझे सलाह दी कि मेरे ही दुकान में कुछ काम करो। तो मैं उसके साथ रहने लगा और कुछ काम करने लगा। लगभग 1-2 वर्षों तक उसके साथ मैंने काम किया
6: जी।
5: और मैं उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा
6: जी।
5: काफी लगन के साथ
6: जी।
5: मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो मैं खुद का कुछ काम, हाथ का कुछ हुनर मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे काम करते करते
6: लगा कि हम बेरोजगार हैं। पहले मन थोड़ा सा भटका हुआ होगा कि हम बेरोजगार हैं, हम क्या करें नहीं करें, ऐसा मन में हुआ था?
5: बहुत तरह के मुझे मन में अलग अलग ख्याल आते रहते थे कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ क्या ये सही है कि नहीं है, मैं इसमें सफलता पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मुझे ये बहुत छोटा बिजनेस लगता था कि मैं ये सब काम नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर मैं टाइम पास के लिए काम कर रहा था
6: जी।
5: लेकिन देखा कि हाँ, इस काम में मुझे मतलब अच्छा लग रहा था कि ये काम है सो अच्छा है, इसमें कुछ सक्सेस है, मुझे इसके बारे में धीरे धीरे सो अच्छा लगने लगा ये काम
6: जी।
5: और इसको लेकर के मैं काफी दिलचस्पी दिखाने लगा
6: जी।
5: और इस काम को मैं बढ़िया से कर रहा था।
6: बिल्कुल, आप सही बोले। आप बहुत अच्छा, आप अपने लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां को देखे, झेले, और उस झेलते हुए आपने मेहनत की और अपने सोच को आपने बदला। आप जैसे पहले बताए कि मेरे कुछ दोस्त थे जो गलत सलाह दिए थे, लेकिन आप उन लोगों का बात नहीं माने, आप अपने मन का बात माने और अपने मेहनत के बल पे आज आपने अच्छा मकाम हासिल किए हैं। आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि आप फर्नीचर पेंट का काम करते हैं, तो आपके सबसे पहले आपको फर्नीचर पेंट करने की जरूरत, क्या क्या चीज का, सामग्री की जरूरत पड़ती
5: है? मुझे पेंट करने के समय कुछ खास सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि काम करते वक्त हमारे आंख में कोई कलर ना पड़े या हमारे हाथ गंदे ना हो, इसको लेकर के बहुत सुरक्षित रखने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे हाथ सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। क्योंकि इसमें कुछ ब्रश पेंट करने में जो कुछ एसिड वगैरह होता है

0: आप फर्नीचर का पेंट का काम करते हैं तो कितने प्रकार का आप पेंट का काम करते हैं ताकि लकड़ियों को सुरक्षित रखा जा सकते है, उसे चमकदार बनाया जा सकता है और उसे एक डिजाइनिंग दिया जा सकता है, तो आप इसमें से कौन कौन से पेंट का काम करते हैं?
1: जी अभी तो मार्केट में बहुत तरह का पेंट है जिसे हम काम करते हैं, लेकिन कुछ खास पेंट्स हैं जैसे एशियन पेंट्स हैं, वुडलेक पॉलिस्टर है, वुडटेक एम्पोरियर पीयू है, वुडटेक एक्वायर पीयू है जिसे हम खिड़कियों और दरवाजों को पेंट ब्रश से चमकीले और सुंदर बना सकते हैं, जो काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं खिड़कियां।
0: जैसे कि आप बताएं कि वुडटेक पॉलिएस्टर का नाम बताएं, तो इसमें वुडटेक पॉलिएस्टर का क्या खासियत है, इस पेंट का क्या खासियत है?
1: इस पेंट का एक खासियत है कि पेंटिंग से वर्षों तक यह चमकते रहता है।
0: अच्छा।
1: और इसका जो है चमक बहुत ही अच्छा होता है जिससे काफी वर्ष तक जो है यह सुरक्षित रहता है दरवाजों खिड़कियों को, और इसमें मजबूती भी होती है जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, दाग धब्बों और खरोचों आदि को दूर रखता है, जैसे इसमें किसी भी प्रकार से खरोच पड़ने पर यह दाग को दिखाई नहीं देता है, तथा तो लकड़ी को पैनिंग वगैरह जो को सुंदर बनाती है।
0: अच्छा, जैसे आप दूसरा फिर बताएं कि जो पेंट है वुडटेक एम्पोरियो पीओ, तो इसमें क्या खासियत है, इस पेंट में क्या खासियत है?
1: इसमें खासियत यह है कि इसमें जो फिनिशिंग है बहुत ही सुंदर फिनिशिंग होती है, जैसे कि पेंटिंग के बाद इसका फिनिशिंग एकदम शीशे का लुक जैसा दिखाई देता है।
0: अच्छा।
1: शीशे जैसा दिखाई देता है और इसका टिकाव बहुत अच्छा होता है इसका।
0: चलिए, इस तरह से आप पेंटिंग का काम करते हैं, इस तरह का पेंट का काम करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने तरह का पेंट का काम करते हैं, जैसे और एक और बताए थे वुडटेक एक्वाडोर पीओ, इसका क्या खासियत है?
1: ये एक इंटीरियर पीओ है जिसमें प्राकृतिक जैसा निखार आता है।
0: प्राकृतिक जैसा?
1: जी जी।
0: अच्छा।
1: इसमें निखार बहुत ही अच्छा होता है, लगेगा जैसे कि प्राकृतिक निखार है।
0: जी जी।
1: और हमेशा इसका निखार इसी तरह बना रहता है।
0: जी, बहुत अच्छी बात बताएं कि आप इस तरह का पेंट का काम करते हैं, इतने सारे आपके पास पेंट है जिससे आप इस काम को करते हैं, और आप लकड़ी को मजबूती प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, और देखिए कि जितने भी घर बनते हैं, मकान बनते हैं, खिड़की बनते हैं, उसमें इस सब का काम किया जाता है, तो आपको काम किस तरह से मिलता है, आप काम को कैसे करते हैं, या कहीं ठेका लेते हैं, या तो जैसे आप कस्टमर आ गए आपके यहाँ आते हैं, या तो आपको ठेका मिल जाता है, ऐसा कहीं?
1: जी, काम बहुत तरह का आता है, जैसे कि हमारा तो खुद का ही दुकान अभी हम कर लिए हैं।
0: जी,
1: जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले दूसरे के पास काम करता था।
0: जी।
1: अब मैं खुद का ही अपना एक दुकान कर लिया हूँ जिसमें मेरे साथ दो तीन स्टाफ काम करते हैं, और बहुत से लोग जानते हैं हमारे काम के बारे में कि हम अच्छा से काम करते हैं, तो इसको लेकर के ऐसे लोग दुकान पे भी आता है खुद काम करवाने के लिए, कुछ लोग ठेका पे ही देता है कि हमारा घर है उसमें ये काम करना है, तो मैं उसके यहाँ देख लेता हूँ कि कौन कौन से काम है, क्या करना है।
2: अपने विक्रम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने बेशकीमती समय दिए और फर्नीचर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपको भी धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया।
3: अभी आप सुन रहे थे विक्रम राणा से ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे फर्नीचर के कार्य क्षेत्र में रोजगार के विकल्प के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार दास। दोस्तों, कौशल का सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता की भावना। जब कोई युवा अपने हाथों से कोई काम करना सीखता है, किसी समस्या का समाधान खुद कर पाता है और अपनी मेहनत से आमदनी अर्जित करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक प्रशिक्षित युवा केवल नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वह जरूरत पड़ने पर रोजगार देने वाला भी बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी युवा ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया है तो वह स्वयं काम कर सकता है और आगे चलकर दूसरे लोगों को भी काम दे सकता है। यदि किसी ने इलेक्ट्रिकल या मोबाइल रिपेयरिंग सीखी है तो वह अपनी छोटी दुकान या सर्विस सेंटर शुरू करने की दिशा में बढ़ सकता है। यानी हुनर हाथ में हो तो अवसर को रोजगार में बदला जा सकता है। दोस्तों, कौशल सीखने के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है सीखने की इच्छा। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती तो निराश मत होइए। किसी भी हुनर में महारत एक दिन में हासिल नहीं होती, पहले सीखना पड़ता है, फिर अभ्यास करना पड़ता है, गलतियों से सीखना पड़ता है और लगातार खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। इसलिए यदि आपने किसी कौशल का प्रशिक्षण शुरू किया है तो उसे बीच में छोड़ने की बजाय पूरा करने का प्रयास करें, और अगर अभी तक आपने कोई कौशल नहीं सीखा है तो आज ही अपने लिए एक कौशल चुनने का संकल्प लें।

प्रशिक्षण में प्रवेश लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहली बात कि अपनी रुचि पहचानें, दूसरी बात अपनी योग्यता और क्षमता को समझें, अपने आसपास रोजगार और बाजार की जरूरत को समझें, विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षक का चयन करें, प्रशिक्षण के बाद लगातार अभ्यास करते रहें, क्योंकि प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन काम करने की वास्तविक क्षमता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आप किसी ऐसे काम में अच्छे हैं जिसे थोड़ा और सीखकर रोजगार का माध्यम बनाया जा सकता है? क्या आपके गांव, कस्बे या शहर में ऐसी कोई जरूरत है जिसे आप अपने कौशल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आपके भीतर संभावनाएं मौजूद है, जरूरत है उन्हें पहचानने की। दोस्तों, कौशल सीख लेना ही पर्याप्त नहीं, कौशल के साथ मेहनत, अनुशासन, समय की पाबंदी और ईमानदारी भी जरूरी है। एक अच्छा कारीगर केवल अपने काम की तकनीक नहीं जानता, बल्कि वह अपने ग्राहक के विश्वास की कीमत भी समझता है। एक अच्छा कर्मचारी केवल अपना काम पूरा नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी से काम करता है। और एक सफल उद्यमी केवल कमाई के बारे में नहीं सोचता, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे को भी महत्व देता है। इसलिए सफलता का सूत्र कुछ ऐसा हो सकता है, कौशल प्लस मेहनत प्लस अनुशासन प्लस निरंतर सीखना बराबर बेहतर भविष्य। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। हमने समझा कि आज के समय में शिक्षा के साथ व्यवहारिक कौशल भी महत्वपूर्ण है। हमने यह भी जाना कि कौशल नौकरी पाने का रास्ता खोल सकता है, स्वरोजगार की दिशा दिखा सकता है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है सीखने की इच्छा का होना। हाथों का हुनर, दिमाग का ज्ञान और दिल में मेहनत, यही बेहतर भविष्य की पहचान है। तो दोस्तों, इतनी बातों के बाद आइए सुनते हैं एक गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनतकश। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है 1942 लव स्टोरी। गायिका है लता मंगेशकर।

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम बनाने की अपील। कहा, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना जरूरी। जेपीएससी जेएसएससी के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज। लाठीचार्ज को लेकर भाजपा और झामुमो ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बासुकीनाथ में अंतिम सोमवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। भीड़ नियंत्रण और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची गुमला सिमडेगा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम

0: सिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। इस मौके पर स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा ने राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और सरकार से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं मिला। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज आरोप लगाया कि पुतला दहन के लिए पहुंचे छात्रों पर कथित रूप से झामुमो कार्यकर्ताओं ने हमला किया।
1: तो राहुल गांधी जी के मुख्यमंत्री को यह कहने के बाद कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं हो, उसी रात को बर्बरता से लाठियां बरसती हैं और फिर जब छात्र पुतला दहन करने जाते हैं तो यह इस बार तो उनके सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे लाठी लेकर छात्रों पर हमला करते हैं। कई छात्र जो है वो जाकर एडमिट भी हैं हॉस्पिटल में।
0: वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने जेपीएससी सुधार मंच की भूमिका और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठाए हैं।
2: जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच है क्या? कौन लोग हैं उसमें? कौन लोग उसको संचालित कर रहे हैं? छात्रों की संख्या उसमें कितनी है? पहला राज्य झारखंड ऐसा जहां रिफॉर्म के लिए हाई लेवल कमिटी बना दी गई, अब रिफॉर्म मंच का एक बैनर लगा के आप जो चाहें सो मनमानी करें, भाजपा के इशारे पर चंदा इकट्ठा सब छात्रों से हो रहा है, अब तो छात्र भी रिवोल्ट कर रहे हैं।
0: छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि रांची में छात्रों का 26-27 दिनों से जारी आंदोलन सफल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में आए निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। श्री महतो ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य के सपने देखने वाले युवा व्यवस्था को लेकर परेशान होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए उनके मामलों का ठोस समाधान होना चाहिए ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।
3: जांच अच्छे से हो, रिपोर्ट मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखा जाए, इसी को लेकर के हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 2400 जिलों पर कर रहे हैं। 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज भर्ती व्यवस्था सुधार, यही हम लोग का लक्ष्य।
0: रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन घेराव जुलूस रैली और आम सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोजकों को अनुमंडल पदाधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम की तारीख समय मार्ग और संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। छात्रों राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अनुमति लेकर ही कार्यक्रम आयोजित करने तथा अफवाहों से बचने की अपील की गई है। किसी भी तरह की शिकायत के लिए अबुआ साथी 9430328080 पर संपर्क किया जा सकता है। हजारीबाग के सभी 16 प्रखंडों में आज मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित शिविर में लोगों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने मौद्रिक लेन देन केवल बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से करने की सलाह दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कल सावन की अंतिम सोमवारी है। देवघर और दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के अंतिम चरण में अंतिम सोमवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं।

0: दुमका जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह के सामूहिक प्रयास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों को ड्यूटी स्थल पर मुस्तैद रहने और आकस्मिक स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष से समन्वय करने का निर्देश दिया।
1: सभी श्रद्धालु जो आने वाले हैं मंडे और ट्यूजडे के लिए, दुमका जिला प्रशासन इनके लिए सारी तैयारी है वो चुस्त रख रही है। उम्मीद यही करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरी हो। निर्देश है कि बेस्ट से बेस्ट के यहाँ सुविधा दे सके और सुगम जलार्पण हो सके, इसी के लिए हम लोग तत्पर है।
0: हजारीबाग के बरही में आज पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकालकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पुलिस ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। पुलिस उपाधीक्षक राधा प्रेम किशोर ने कहा कि प्रशासन की पहल और समाज की सहभागिता से नशे के खिलाफ प्रभावी बदलाव लाया जा सकता है।
2: जो ये मुहिम हमारा नशा के खिलाफ है, हम अपने अनुमंडल के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आपका सहयोग हमें मिलता रहे तो आप ये निश्चित जानिए कि नशा के सौदागरों के खिलाफ जो ये शुरुआत हम लोगों ने की है, इसका एक अंजाम तक हम लोग जरूर देंगे। और वैसे सौदागर सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारी टीम जो है सजगता पूर्वक इस अभियान को आज से जब शुरू की है तो वो निरंतर प्रयासरत।
0: पलामू जिले के चैनपुर थाना परिसर में आज जेल से छूटे आपराधिक मामलों के आरोपितों की थाना परेड कराई गई, जिसमें कुल 117 लोग शामिल हुए। इनमें हत्या के 26, लूट के 15, चोरी के 15, आर्म्स एक्ट के 31 और अन्य मामलों के 28 लोग शामिल थे। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने सभी को कानून का पालन करने और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देते हुए दोबारा अपराध में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा मध्यवर्ती जिले खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 26 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के साथ निकटवर्ती मध्यवर्ती जिलों लोहरदगा और खूंटी में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। विभाग ने बताया है कि 27 अगस्त को रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और धनबाद में भारी बारिश का अनुमान है। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील। कहा, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना जरूरी। जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन पर सियासत तेज। लाठीचार्ज को लेकर भाजपा और झामुमो ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बासुकीनाथ में अंतिम सोमवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। भीड़ नियंत्रण और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची, गुमला, सिमडेगा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी शबनम प्रवीण का साहिबगंज दौरा हुआ। खाद्य आपूर्ति से संबंधित शिकायतों, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों के पूरक पोषण आहार इत्यादि का निरीक्षण एवं साफ सफाई पर समीक्षा किया गया। शबनम प्रवीण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न और अन्य निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगर शिकायतें होती हैं तो इसका त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जाए।
2: हमारा जो अभी समीक्षा बैठक हुआ है, मैं फील्ड विजिट की हूँ। फील्ड विजिट में भी मुझे एक स्कूल में लकड़ी पे खाना बनते हुए मैंने पाया, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और आंगनबाड़ी में जो बच्चों को जो प्रत्येक दिन जो अंडा देने की बात है, तो यहाँ पे बच्चों को महीना में 6-7 दिन ही अंडा दिया जा रहा है। बैठक का मुख्य विषय यही था कि जो भी केस पेंडिंग है, जो शिकायत पेंडिंग है आयोग में, तो वो शिकायत का निवारण जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जल्द से जल्द कर।
1: आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली के उत्थान को लेकर जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस वर्ष का थीम आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार में योगदान आधारित रहा। आदिवासी हमेशा से जल, जंगल, जमीन से जुड़े रहे हैं। इनकी जीवन शैली प्रकृति अनुरूप रही है, जिसके वजह से आज प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित हैं। साहिबगंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि आदिवासी के परंपरा जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है।
3: भारत में अनेक प्रांतों में आदिवासी जन रहते हैं, खास करके झारखंड की तो पहचान ही हमारे संथाल, राम, गिरोह, पहाड़िया और अन्य कई सारे आदिवासी समाजों से होती है। इनकी परंपरागत नीतियां हैं, ये सब प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष यानी कि 2026 का जो थीम है विश्व आदिवासी दिवस का, वो है आदिवासी महिलाओं में जो केयर गिविंग महिलाएं होती हैं, जो प्रसव के दौरान या अन्य रोग के दौरान जो उपचार करती हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस साल का विश्व आदिवासी दिवस का थीम डिसाइड किया गया।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फसलों का बीमा किया जा रहा है। 31 अगस्त तक किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, प्रखंड कार्यालयों, एटीएम, बीटीएम से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान गोष्ठी और जागरूकता रथ के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है। किसान अपने फसलों का बीमा 1 रुपए टोकन मनी से करा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, आज भी हमने रथ यात्रा निकाला है किसानों को जानकारी देने के लिए। मात्र 1 रुपए का टोकन मनी है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर हमारा धान अफेक्ट हो वेदर के कारण तो उनको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े।
1: विगत दिनों गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी के निशान को पार कर चुका था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी गंगा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं लम्हे फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाज है।

जब जब फूल खिले। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में इस फिल्म का गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। पेश है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। हीरा पन्ना, सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म चुपके चुपके में। इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, आज बेहद खास दिन है, इसलिए इस कार्यक्रम को हमने सजाया है उनके ही गीतों से जिनका आज जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की। आज 23 अगस्त है। आज के दिन हिंदी सिनेमा की खूबसूरत, चुलबुली और बेहद लोकप्रिय अदाकारा सायरा बानो का जन्मदिन है। एक ऐसी अभिनेत्री जिनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में शरारत थी, अदाओं में नजाकत थी और अभिनय में एक सहज चमक। 1960 और 70 के दशक का हिंदी सिनेमा याद कीजिए। रंगीन पर्दा, मधुर गीत, बड़े बड़े सितारे और उनके बीच एक खूबसूरत चेहरा जो देखते ही देखते दर्शकों के दिलों में बस गया, वह चेहरा था सायरा बानो का।

दोस्तों, सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ। उनकी माँ मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो थी। सायरा ने अपने बचपन का एक हिस्सा लंदन में बिताया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा की दुनिया थी। और फिर आया साल 1961। फिल्म थी जंगली, नायक थे शमी कपूर और यह सायरा बानो की पहली फिल्म थी। जंगली सिर्फ सायरा बानो के करियर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक ऐसा दरवाजा था जिसकी दूसरी तरफ शोहरत उनका इंतजार कर रही थी। फिल्म में उनकी ताजगी, मासूमियत और युवा ऊर्जा दर्शकों को बेहद पसंद आई। सुनते हैं जंगली फिल्म का एक गाना।

दोस्तों, सारा बानो को अक्सर उनकी सुंदरता के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके अभिनय को केवल सुंदरता तक सीमित करना उनके साथ न्याय नहीं होगा। उन्हें अलग अलग तरह के किरदार निभाने का अवसर मिला। शागिर्द फिल्म में उनकी कॉमिक और रोमांटिक अदाकारी दिखाई दी। दीवाना में उन्होंने भावनात्मक भूमिकाओं को संभाला। आदमी और इंसान जैसे फिल्मों में उनका अभिनय गंभीर धरातल पर दिखाई देता है। सायरा बानो केवल स्टार नहीं थी, वह एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने अभिनय के लिए लगातार पहचान मिली।

अब हम बात करते हैं साल 1970 की, जब एक फिल्म आई पूरब और पश्चिम। इसके निर्देशक और अभिनेता थे मनोज कुमार। सायरा बानो ने इसमें पश्चिमी परिवेश में पली बड़ी प्रीति का किरदार निभाया। इस फिल्म में सायरा बानो का रूप उस समय के दर्शकों के लिए बेहद नया था। उनका आधुनिक अंदाज, पहनावा और व्यक्तित्व सब कुछ चर्चा में आया। इस फिल्म के संगीत में कल्याण जी आनंद जी का महत्वपूर्ण योगदान था। पूर्व पश्चिम फिल्म के गीतों में पुरवा सुहानी आई रे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे और दुल्हन चली जैसे गीत शामिल हैं। सुनते हैं पुरवा सुहानी आई रे।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया की कुछ अदाकाराएं ऐसी होती हैं जिनकी खूबसूरती, मासूमियत और चुलबुली अदाओं की अपनी ही पहचान होती है। ऐसी ही बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री हैं सायरा बानो। सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी खूबसूरत मुस्कान और नटखट अंदाज ने खास तौर पर उस दौर के युवा दर्शकों को खूब आकर्षित किया। सायरा बानो की शुरुआती छवि एक बेहद खूबसूरत, आधुनिक और चुलबुली अभिनेत्री की बनी, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि उन्होंने खुद को केवल एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। रोमांस हो, कॉमेडी हो,

सामाजिक विषय हो या गंभीर अभिनय, उन्होंने अलग अलग रंग आजमाए। 1960 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बेहद महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में सायरा बानो ने एक के बाद एक लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, शागिर्द, दीवाना, अमन, साज और आवाज, और फिर आई वह फिल्म जिसने सायरा बानो को युवा दिलों की धड़कन बना दिया। वह फिल्म थी पड़ोसन। 1968 की पड़ोसन हिंदी सिनेमा की यादगार कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। इसमें सायरा बानो के साथ सुनील दत्त, महमूद और किशोर कुमार थे। संगीत आरडी बर्मन का था। यह फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, इसमें संगीत, हास्य और अभिनय का ऐसा मेल था कि आज भी इसके दृश्य और गीत दर्शकों को हंसाते हैं। सायरा बानो ने इसमें बिंदु नाम की एक सरल, खूबसूरत और संगीत प्रिय युवती का किरदार निभाया था। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी अभिनय का सहज रखना। वह कैमरे के सामने अभिनय करती हुई कम और किरदार को जीती हुई ज्यादा दिखाई देती थी। आज हम जिस गीत की ओर बढ़ रहे हैं, 1960 के दशक की बेहद लोकप्रिय फिल्म पड़ोसन का है। इस फिल्म में सायरा बानो ने अपनी चंचल अदाओं से गीत को और भी खूबसूरत बना दिया। तो आइए कुछ पल के लिए लौट चलते हैं उस सुनहरे दौर में, जब गीतों में शरारत थी, धुनों में मिठास थी और पर्दे पर सायरा बानो की मासूमियत थी। पेश है पड़ोसन फिल्म का बेहद ही खूबसूरत गीत, मैं चली मैं चली, देखो प्यार की गली।

दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, 60 के दशक का वह सुनहरा दौर जब फिल्मी गीतों में मोहब्बत की सादगी थी, शब्दों में मिठास थी और धुनों में दिल को छू लेने वाली एक खास रवानी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जंगली फिल्म का बेहद ही खूबसूरत गीत दिन सारा गुजारा तेरे अंगना। इस गीत में उस दौर की मशहूर और बेहद खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो की मनमोहक अदाएं देखने को मिलती हैं। गीत की खासियत है इसका सरल, चंचल और प्रेम से भरा अंदाज, जैसे कोई अपने प्रिय के आंगन में बिताए एक पूरे दिन की मीठी यादों को गीतों में पिरो रहा हो। सायरा बानो की मुस्कान और उनकी भाव भंगिमाएं इस गीत को और भी यादगार बना देती हैं। तो आइए कुछ पल के लिए लौट चलें उस सुनहरे सिनेमाई दौर में, जहां प्यार की भाषा बड़ी सीधी थी और दिल की बात गीतों के जरिए कही जाती थी। लीजिए सुनिए फिल्म जंगली का यह खूबसूरत गीत और सुनते रहिए हमारे ये कार्यक्रम, यादों के सुहाने सफर का आनंद लेते रहिए।

0: दोस्तों, सायरा बानो की निजी जिंदगी का जिक्र हो और दिलीप कुमार का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं। 1966 में सायरा बानो ने महान अभिनेता दिलीप कुमार से विवाह किया। विवाह के बाद भी सायरा बानो ने अभिनय जारी रखा और कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार के साथ गोपी और सगीना जैसी फिल्मों में काम किया। सायरा बानो की अभिनय शैली में एक खास बात थी, वह बहुत जोर देकर भाव व्यक्त करने के बजाय अक्सर आंखों और चेहरे के भावों से काम कर जाती थीं। उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और मुस्कान, ये उनके अभिनय पहचान का हिस्सा बन गए। आज जब हम सायरा बानो की जन्मदिन पर उनकी फिल्मी यात्रा को याद कर रहे हैं, तो हमारे सामने सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री की तस्वीर नहीं आती, हमारे सामने आती है एक ऐसी कलाकार की तस्वीर जिसने हिंदी सिनेमा के एक बेहद रंगीन दौर को अपनी मुस्कान, अपनी अदाओं और अपने अभिनय से रोशन किया। आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम सायरा बानो जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें लंबी, स्वस्थ और सुखद आयु दे। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी पुरानी फिल्मों की कोई धुन बसी है तो उसे आज जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ कलाकार पर्दे से उतर जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं उतरते। सायरा बानो भी उन्हीं कलाकारों में से एक है। सुनते हैं गोपी फिल्म का गाना, जो कि फिल्माया गया दिलीप कुमार और सायरा बानो पर।
1: गुड मॉर्निंग, वन टू थ्री फोर,
2: अरे वन टू थ्री फोर,
1: मैं कैसे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर,
2: थप्पड़ रखे
1: आवृत डाबर,
2: अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला।
3: Guess what? Water stand.
4: Duke band. King Pate.

दोस्तों, फिल्म झुक गया आसमान वर्ष 1968 में आई थी। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की जोड़ी नजर आई थी। इस फिल्म का बेहद मधुर गीत मेरे तुम्हारे बीच में, अब तो न पर्वत न सागर। इस गीत को अपनी जादुई आवाज दी सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत की खूबसूरती को पर्दे पर अपने भावपूर्ण अदाओं से सजाती दिखाई देती हैं उस दौर की बेहद लोकप्रिय और खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो। सायरा बानो की मुस्कान, उनकी नजाकत और गीत के भावों के अनुरूप उनके चेहरे के भाव इस गीत को और भी यादगार बना देते हैं।

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। समाचार संध्या एवं न्यूज़ @9 के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
5: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
6: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
7: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
8: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
10: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
9: During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
10: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
9: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
9: On National Space Day, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said the historic soft landing of Chandrayaan 3 placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited, worth approximately 3,400 crore rupees in Kolkata. The defense minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high quality maintenance services and timely delivery of defense products to achieve this goal.
11: When a ship is built, thousands of dreams also take shape. When we build our own ship, it is natural that our foreign exchange will be saved and at the same time our economic development will move forward rapidly. Shipbuilding will lead to industrial development, MSMEs will definitely get a boost, and in large numbers, direct and indirect job opportunities will also be created.
9: Mr. Singh said Indian Armed Forces are increasingly relying on indigenous defense products.
11: During Operation Sindoor, the world has seen the capabilities of India's indigenous weapon systems, and in the future, along with the Ministry of Defense, our lab, our public sector undertakings and private stakeholders will not leave any stone unturned in arming our forces with indigenous weapons. We have proven that self-reliance is not just a policy, self-reliance is a multiplier of the battlefield capability, and in this regard, the role of GRSE and Yantra India Limited is going to be extremely important.
9: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. They said the influenza strains currently circulating are well matched with the vaccine strains recommended for the Northern Hemisphere. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The medical body stated that young children, elderly persons and individuals with underlying medical conditions may be at greater risk of complications. If symptoms persist, worsen or become severe, timely consultation with a doctor is advised. ICMR said the situation has been closely monitored through regular surveillance and necessary public health measures are being undertaken. Director General of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, Dr. M.L. Jatt, today said the soil database and information system developed by the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning is a crucial foundation for crop improvement, agricultural development and the creation of decision support systems. Mr. Jatt was speaking at the 50th Foundation Day of the Bureau in Nagpur. He said the Bureau recently developed India's first soil texture map using remote sensing and satellite data. It provides hectare-level insights to help farmers select optimal crops. He said the Bureau is now working on high-resolution water retention maps, particularly for Maharashtra and the southern states. The National Skill Development Corporation, NSDC, and the Cultus Education have announced the launch of nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. BJP today demanded the Congress Party to support the Women's Reservation Bill in the Parliament instead of playing politics around it. Talking to reporters in New Delhi, BJP National General Secretary Smriti Irani asked the party to prove that it supports women by helping implement the 33% reservation for them in Parliament. Ms. Irani appealed to all political parties to work together so that women get more seats in the Lok Sabha and state assemblies. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow today on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Iranian Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi has dismissed renewed US threats of economic sanctions against Tehran, calling them a recurring tactic. According to Iranian state media, Mr. Araghchi said the US was resorting to economic pressure out of desperation after what he described as a failure of the previous measures. His remarks came after US President Donald Trump announced an economic D-Day campaign against Iran, calling it the most severe economic operation ever imposed on a country, and urging US allies to join Washington in isolating Tehran. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. Addressing the gathering, Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia called for building a strong BRICS sporting partnership with practical and sustained cooperation. Our correspondent has the details.
12: The key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sport technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. India's proposal for a BRICS sports manufacturing conclave has also received broad support. The inaugural conclave is proposed to be held in Udaipur in November this year, providing a platform for manufacturers, investors, technology companies and research institutions to share expertise and promote innovation. Another major initiative is the BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration Game, proposed to be held in Ahmedabad in October. The event will showcase the rich sporting heritage of BRICS countries and strengthen culture and people-to-people ties. The successful BRICS Sports Ministers meeting has laid the foundation for sustained sporting collaboration among BRICS nations. Allu Murli, Akashvani News, Visakhapatnam.
9: In football, East Bengal FC have lifted the Durand Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating arch rivals Mohun Bagan Super Giant 4-1 in the final in Kolkata this evening. We have a report.
13: All the goals in the Durand Cup final today were scored in the first half. Edmond Lalindika scored a hat-trick for East Bengal, while Bipin Singh added another goal. Manbir Singh scored the sole goal for Mohun Bagan. Edmond Lalindika of East Bengal was selected as the player of the tournament and won the golden ball. Aladdin Azerai of Northeast United FC won the golden boot for scoring the highest number of goals. Vishal Kait won the golden gloves for best goalkeeper of the tournament. Defence Minister Rajnath Singh witnessed the final match at the stadium and presented the trophy to the champions. Kollan Laha, Akashvani News, Kolkata.
9: In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at the 10:30 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India with 300 for 5 in the first innings against host Sri Lanka at stumps on day 1 of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurel and Saransh Jain were at the crease at the draw of stumps this evening. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 of 193 balls, while skipper Shubman Gill also scored a half century. Earlier, India won the toss and opted to bat. The visitors clinched the first test for 165 runs and currently lead the two-match series 1-0. India needs to win this match also to move into fourth place in the race for the 2025-27 World Test Championship final. Australia is at the top, followed by South Africa and New Zealand. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places for tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Duran Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. And that is all in the news at 9. Good night.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: उस जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

0: दोस्तों, साहरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे। आज

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल याद।

0: विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधविका प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हम आपके पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है पाकीजा, आवाज लता मंगेशकर की है, पसंद आप सभी श्रोताओं की। भादुड़ी झुमरी तिलैया से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता, उनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सापले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया। चिपाकला बड़कागांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। मगनपुर से अमजद अली, अब्बास आलम और आलम अली।

पारस मणि सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और कमल बरोट की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू। खरसावां से आप हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जनेश नायक और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। हजारीबाग पतरातू से बेसिल खालखो, मधु, रितु, रचना, मीतू, स्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और उनका पूरा परिवार। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। ओल्ड नेसस ग्रुप बरकाकाना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

हैं, सुनते हैं परिचय फिल्म का गाना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा। खिरगांव मालीटोला से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। ग्राम पोचरा से महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, पिंटू कुमार और कुमारी वर्षा। बेर्डी से हुकुम, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तन्नू। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीज फातमा, यास्मीन फातमा और शहनाज फातमा।

पेइंग गेस्ट। सुनते हैं इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को सुना चाहे हमारे इन सभी श्रोताओं ने रेंज ऑफिस पर ही से वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि कुमारी, ज्योति कुमारी, गंगा कुमारी और मिस्टी रानी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा और प्रकाश, पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा, पथरिया से नरेन, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष, नया पारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और कुमारी श्रद्धा साहू।

पिया का घर सुनते हैं। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। पसंद आप सभी श्रोताओं की। सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। पाकुड़ से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, वासु, अर्णव और सत्यम।

प्रेम पर्वत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की पंचमंदिर रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हविया खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, मलौट से सतीश, सीमा, धर्मपाल, वीर, लखवीर, महावीर, गुरुचरण और रमेश किलानी।

दोस्तों, आप भी अगर अपने पसंद का कोई गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमारे पास। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी चाहत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग। और इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम शामे गजल। लोग तुमको गुलाब कहते हैं और जाने शबाब कहते हैं, आप जैसे हसीन चेहरों को हम खुदा की किताब कहते हैं। सुनते हैं ये गजल पंकज उदास की आवाज में।

कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। सुनते हैं ये गजल गुलाम अली की आवाज में।

इसी के साथ कार्यक्रम शामे गजल यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है.
2: Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research ICMR has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow today on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The National Skill Development Cooperation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. In football, East Bengal FC have lifted the Durand Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating arch-rival Mohun Bagan Supergiants 4-1 in the final in Kolkata this evening. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से. हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर. यहीं संपन्न होती है हमारी आज की सभा. कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।